शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: Hi, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।
3: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हमें भगवद गीता एक बहुत सुंदर बात बताती है। वह हमें बताती है कि जिस प्रकार से एक गांव में बहुत सारे कुएं होते हैं, किसी कुएं में कपड़े धोते हैं, किसी में हम स्नान करते हैं, परंतु इन सारे कुओं का जो कार्य है एक नदी पूर्ण कर देती है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ लेकर चलेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अलग अलग कुओं में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उस पर पूरे फोकस से कार्य करें तो आप उसको बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए फोकस होना जीवन में बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda. Yeah.

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन

0: ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Solo Sharda.
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: सुनो शारदा।
7: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
8: राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं अपने खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, लेकिन आज एक खास प्रोग्राम हम लोग डिजाइन कर लेकर आए आपके बीच में और पुरानी यादों को ताजा करेंगे, उन यादों को ताजा करेंगे जब हम लोग देखा करते थे, जब हमारी बुनियादें बुनियाद यानी कि परिवार से जुड़ा करती थी। बुनियाद सीरियल का मैं जिक्र कर रहा हूं मैं हम लोग का, और उस अभिनेता का जिसकी बदौलत हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती, जिसकी बदौलत हमारे चेहरे पर खुशियां तमाम आ जाती। जी हाँ, मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं नन्हे एक्टर, जिन्हें हम नन्हे एक्टर कहा करते थे, जिनका नाम बहुत ही खूबसूरत है, अभिनव चतुर्वेदी जी। तो सर, सुरोशाद 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
7: धन्यवाद, मैं बहुत प्रसन्न हूँ यहाँ आकर शारदा यूनिवर्सिटी और आपके स्टूडियो में, और सुनो शारदा 90.8 FM। मैंने सुना है कि बहुत बड़ा अच्छा आपका एक विकसित समुदाय चैनल है
8: जी।
7: 16 किलोमीटर के आसपास की रेंज है, काशी मेरे घर सरता विहार तक भी आ सकता
8: जी,
7: लेकिन सुना उसके लिए भी आपने एक ऐप निकाल दी है।
8: क्या बात।
7: तो अच्छा है कि एक कम्युनिटी रेडियो, जिसकी बहुत सख्त जरूरत भी है, क्योंकि देश दुनिया की खबरें तो टेलीविजन दे ही देता है, लेकिन समुदाय की जो न्यूज़ है, जो उसके अपने अपने रोजमर्रे के काम है, उसमें आप इतना अग्रणीय होकर काम कर रहे हैं। गगन जी, मैं आपको और आपकी टीम को बधाई देता हूँ।
8: देखिए दोस्तों, ये एक बात है, एक सुलझा हुआ इंसान ही कर सकता है, सुलझा हुआ एक कलाकार ही कर सकता है। थोड़ी ही बातें हमारी ऑफेयर हुई और सर ने उन बातों को एक अच्छी तरीके से पिरो कर हमारे सामने रख दिया। मैं आपको सर के बारे में और बताना चाहूंगा, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑली ऑन सुरुशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, और स्टूडियो में मेरे आज साथ ही खास मेहमान हैं अभिनव चतुर्वेदी जी। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं नन्हे एक्टर, जिन्हें हम नन्हे एक्टर कहा करते थे, जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है अभिनव चतुर्वेदी। दूरदर्शन को हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि दूरदर्शन से हमारी दूर दूर तक की यादें जुड़ी हुई हैं। और वो दर्शन कराता था देश का, संस्कृति का, हमारी बुनियाद का। बुनियाद धारावाहिक को हम कैसे भूल सकते हैं, जो एक ऐसी पृष्ठभूमि पर आधारित था। और उसके अभिनेता अभिनव चतुर्वेदी जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और फ्लैशबैक में मैं अगर जाऊं तो थिएटर से शुरुआत रही, और शुरुआत रही जब दौर गुजर रहा था एक आप अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं अभिनेता के साथ। तो सर वेलकम बैक, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: मैं उस दौर में जाना चाहूंगा जब आप क्रिकेट खेला करते थे, राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भी आपने पदार्पण किया, फिर इस तरफ आना कैसे हुआ अभिनय की दुनिया में?
0: गगन जी, मेरे पिताजी मॉडर्न स्कूल बारखंबा रोड में पढ़ाते थे और बहुत ही मायनाज, बहुत ही बड़ा नाम था उनका क्रिकेट कॉमेंट्री जगत में, अभय चतुर्वेदी। तो जैसे घर में परवरिश होती है तो वो हॉकी बहुत अच्छी खेलते थे, नेशनल्स खेले थे। मैं भी हॉकी बहुत नेचुरली खेलता था, अभी भी खेलता हूँ, लेकिन क्रिकेट की तरफ मेरा रुझान इसलिए हुआ क्योंकि कीर्ति आजाद हमारे स्कूल में थे
1: जी।
0: और वो जूनियर टीम में ही उन्होंने करीब एक ही मैच में डबल सेंचुरी लगा दी थी। तो कीर्ति भैया हो गए, भुवनेश चड्ढा हो गए, दीपक चड्ढा हो गए, अमिताभ कांत जो हमारे G20 के शेरपा हैं, वो भी क्रिकेट खेलते थे
1: जी जी
0: मॉडर्न स्कूल में। तो इन सब सीनियर्स को देख देख के हमने भी सिक्स क्लास में क्रिकेट लेनी शुरू कर दी। केसी शुक्ला जी हमारे कोच थे और साथ साथ में राजू सेठी, भास्कर पिल्ले ये भी आ गए थे स्कूल में, अतुल मारवा मेरे कैप्टन थे
1: जी।
0: तो फिर हमारे मैचेस होते थे सेंट कोलंबस स्कूल और बाल भारती एफओ स्कूल से, और बाल भारती एफओ स्कूल में सिक्स क्लास में मैं और मनिंदर सिंह जो दिल्ली इंडिया के फाइनली खेले लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो खेलते थे। साथ साथ में हमारे जब इंटर जोन मैचेस होते थे दिल्ली के जितने खिलाड़ी थे, मनोज प्रभाकर, हम लोग सब खेलते थे। तो अच्छी क्रिकेट होती थी और हॉट वेदर क्रिकेट टूर्नामेंट खेलते थे सिक्स फार्म से। तो संदीप गोयल वहाँ पर खेलते थे। साथ साथ में जो जोन मैचेस होते थे जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के, तो कुछ बिहार ट्रॉफी में मेरा सिलेक्शन हुआ 11th स्टैंडर्ड में, तो मेरा पहला नेशनल्स था। और पहला नेशनल्स जो सीके नायडू ट्रॉफी में हुआ, तो गांधीनगर में सबसे पहला मैच हमारा हुआ संजय मांजरेकर के अगेंस्ट, और मेरी बॉलिंग एनालिसिस थी कोई 19 ओवर 12 मेडन, कोई 22 रन और विकेट लेस, लेकिन वो संजय मांजरेकर के साथ मेरी जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, संजय से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। फिर मनिंदर तो थे ही साथ साथ में। फिर मैं कुछ बिहार नेक्स्ट ईयर दिल्ली के लिए भी खेला अंडर 19, और उसी साल मुझे कैप्टन उस मैच में सेकंड ईयर में चेतन शर्मा वाज प्लेइंग फॉर हरियाणा। तो हमारे मैचेस जो जोनल्स के होते थे, चेतन शर्मा वेरी वेरी क्विक बॉलर और इंडिया को नॉक कर रहे थे। फिर अंडर 19 12th स्टैंडर्ड में आई वॉज मेड कैप्टन दिल्ली स्टेट अंडर 19 इन गुवाहाटी, जहाँ हमने पिछले रनिंग चैंपियंस गुजरात को 5.5 दिन में इनिंग्स डिफीट करके भारत के भेज दिया
1: जी।
0: और असम को भी यही किया। फाइनल में हमारी मुलाकात उत्तर प्रदेश से हुई, जहाँ विशाल भारद्वाज दी विशाल
1: बड़े बड़े दिग्गजों के साथ आपने खेला।
0: बंटी यूज्ड टू प्ले मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड लेग स्पिनर, तो विशाल भारद्वाज जिन्होंने माचिस बनाई है, ध्रुव की बिजली का मंडोला बनाया है, हैदर बनाई है। विशाल और मैं 12वीं क्लास से बंटी को मैं तब से जानता हूँ। और फिर जाके फिर इंडिया अंडर 19 में मेरा नाम आ गया, लेकिन मेरे फादर ने मुझे जाने नहीं दिया बिकॉज आई हैड माय बोर्ड एग्जाम्स। और फिर मैं अंडर 22 खेला दिल्ली के लिए, जहाँ मनोज प्रभाकर हम सब साथ क्रिकेट खेलते थे, और नवजोत सिंह सिद्धू मेरे कॉलेज में भी आए, दो तीन दिन मेरी क्लास में बैठे हिस्ट्री ऑनर्स में सेंट स्टीफन्स कॉलेज से, वहाँ भी अच्छी क्रिकेट खेली साथ में। और फिर अंडर 22 और 5 रणजी ट्रॉफी कैंप्स मैंने किशन सिंह बेदी जी के साथ अटेंड किए।
1: लवली।
0: तो वो क्रिकेट मैंने खेली डिस्पाइट माय फादर, मतलब मेरे फादर कुछ बोलते नहीं थे कभी किसी को सिलेक्शन में। वहाँ तक जाना चेतन चौहान, मनिंदर सिंह, मनोज प्रभाकर, चेतन चौहान, रमन लामा, कीर्ति आजाद, मदन लाल जो 83 की कप की, सुनील वॉल्सन, इन सब के साथ मुझे क्रिकेट खेलने का सौभाग्य मिला।
2: बहुत अच्छा।
0: तो फिर यूनिवर्सिटीज के मैचेस खेले, उसके बाद फिर क्रिकेट का भूत तो अभी तक नहीं उतरता
2: जी।
0: अभी भी हमारी वेटरन्स क्रिकेट इंटरनेशनल करके है, संजीव सेठ उसके नॉर्थ के हेड हैं, अभी हम 50 प्लस वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और अभी मैं डीडी स्पोर्ट्स में एंकरिंग भी कर रहा हूँ। और तो क्रिकेट से मेरा अभी तक संबंध है, रहा है। भारत की जो विमेंस टीम ने जो
2: वर्ल्ड कप
0: जीता है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बहुत अच्छा है कि विमेंस टीम एक इंस्पायर करेगी और जनरेशन को भी, क्योंकि जिस बीड़े को जूलियन गोस्वामी या अंजुम चोपड़ा या मिताली राज ने उठाया था, वो इस टीम ने थ्रू
2: करके दिखाया,
0: हरमनप्रीत कौर ने उनकी टीम ने करके दिखाया है। बहुत बड़ी बात होती है कि मुसलसल आप प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यू नो कांस्टेंट प्रहार कर रहे हैं कि भाई हमें जीतना है, और इस बार उन्होंने करके दिखाया है। तो भारत उनको बहुत बधाई देता है।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लिसनर्स, मुझे लगता है कि सर अगर अभिनय की दुनिया में नहीं होते, जिस तरीके से क्रिकेट में नाम कमाए और आगे जाकर और नाम कमाते और देश के लिए खेलते, लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट आता है और उसके बाद हमारी लाइन चेंज हो जाती है। सर से मैं ये जानूंगा जरूर कि किस कदर ये लाइन चेंज हुई, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे, और अभिनय की दुनिया में आना कितना आसान है, क्या टफ है। स्टूडेंट्स के लिए वो क्या एक संदेश आखिर में देना चाहेंगे, आखिर मैं आखिर की बात कर रहा हूँ अभी नहीं। तो वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जिनको देखकर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम खुश होते थे, हम मनोरंजन की दुनिया में चले जाया करते थे, उनको देखकर हम बड़े हुए हैं। हमें भी लगता था कि हमें भी एक ऐसा ही एक्टर बनना है। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं हमें लगता है कि निश्चित तौर पर जब हम क्रिकेट खेला करते थे या खेलेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे। जी हाँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं बुनियाद और हम लोग के बड़े खूबसूरत एक्टर बाज सौदागर बुनियाद। इस तरह से तमाम यूं कहें कि एक लंबा अनुभव के साथ आप आते हैं। आप हैं अभिनव चतुर्वेदी जी। तो सर, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर, ये जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, ये जो चेंज आया जब आप अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे उसके बाद आपने स्विच किया अभिनय की दुनिया में, तो कितना आसान था या कितना टफ था?
0: देखिए, मैंने अभिनय शुरू किया 5 वर्ष की उम्र से। जब मैं ओम शिवपुरी जी जो हमारे मॉडल स्कूल कैंपस में रहते थे
1: जी,
0: मेरे फादर भी वहीं रहते थे, तो हम लोग सब एक ही कैंपस में रहते थे, तो थिएटर तो मैंने बहुत जल्दी उम्र में शुरू कर दिया था। अब क्या हुआ कि वो क्रिकेट भी शुरू हो गई, तब एक वन सिंगल व्हीलर से वो टू व्हीलर बन गया। अब गाड़ी और समझ में नहीं आती थी कैसे चलानी है, तो क्रिकेट अच्छा खेलना शुरू किया। इस पतला सुखड़ा सा मैं होता था, मेरे को ऑफ स्पिन फेंकनी आती थी और बैटिंग तो मेरी थी और फील्डर में बहुत अच्छा था।
1: आप अच्छे इंसान हैं, आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह तो बहुत अच्छी, आंखें बहुत खूबसूरत हैं सर आपकी।
0: जब मार खाते हैं तो अपने आप अच्छे बन ही जाते हैं। मार खा खा के इंसान को, कहते एक शेर है उर्दू का
1: जी,
0: कि सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद।
1: क्या बात।
0: तो जब तक आप पिसेंगे नहीं, जब तक इफ यू डोंट गो टू ग्राइंड सेशन वॉस में मैं ये कह रहा था कि जब तक आप ग्राइंड के थ्रू नहीं जाते,
1: क्या बात,
0: तब तक आप निखर के नहीं आते। और उसके लिए ग्राफ का ऊपर नीचे होना बहुत जरूरी है। पर मेरे गुरु इतने अच्छे थे कि दीनानाथ जी ऑल इंडिया रेडियो में, सत्यन शरद, मुद्रा राक्षस नाटकों में करने गया, ओम शिवपुरी जी, सुधा दीदी, सुधा आंटी, विवेकानंद साहब, बी एम शाह, विश्व मोहन बडोला, मेरी अपनी स्कूल की टीचर मिसेज उमा सहाय,
1: क्या बात,
0: और बनवारी तनेजा, रवि बासवानी, फिर जब मैं डायरेक्शन में मतलब एक्टिंग करने गया तो रमेश सिप्पी जिन्होंने शोले बनाई थी, वो मेरे डायरेक्टर, सुभाष घई, सुभाष घई साहब, राहुल रवेल जी जिनके साथ मैंने 2 फिल्में की, राकेश कुमार जिनके साथ मैंने सूर्यवंशी की, और वो डायरेक्टर थे 11 फिल्म के अमिताभ बच्चन जी के साथ,
1: बहुत बड़ा था,
0: बाज गोविंदा जिसमें एच सुभाष डायरेक्टर थे। तो वो सारा का सारा जो गुरुओं के थप्पड़ पड़ने, मतलब शिक्षा के थप्पड़ पड़ने, उसने मुझे हमेशा, कहीं मैं गलत हुआ तो सवाल पूछ लेता था, अभी क्या प्रॉब्लम है, और वो वैसे ही थे कि आज तो बताना है, डिटेल में समझाना है। तो वो एक अच्छे, आई वॉज लकी कि मुझे अच्छे गुरुओं ने उठाया भी, और जब मैं फॉल किया, मेरी जब पहली फिल्म फ्लॉप हुई पर्वत के उस पार, तो उसने मुझे संभाला भी।
1: क्या बात है,
0: कि डोंट गिव अप, वी आर ऑल देयर फॉर यू। और मेरी पिक्चर फ्लॉप होने के बाद रमेश जी ने मुझे भ्रष्टाचार फिल्म दी रेखा जी, मिथुन जी के साथ और रजनीकांत सर के साथ काम करने के लिए, और राहुल जी ने मुझे दी योद्धा संजय दत्त और सनी देओल के, तो दोनों फिल्में फिर मेरी अच्छी हुई और ठीक ठाक चलता गया। फिर जब सौदागर कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मुझे, मेरे फादर को कैंसर हो गया तो मुझे दिल्ली वापस आना पड़ा, मेरे कोई भाई बहन नहीं है तो मेरी शादी हो गई, और फिर मैंने अपनी दिल्ली में फिल्म प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। अब मैं जब वापस शिफ्ट किया तो मैं डिप्रेशन में चला गया, बिकॉज मेरे पास कोई काम नहीं था
1: जी,
0: और सब यही सोच के गए थे भैया यहाँ से तो हीरो बन के जाएंगे
1: जी जी,
0: और लौटे हीरो बन के, तो सब यही कहते थे कि भाई पता नहीं आदमी कैसे करेगा क्या करेगा
1: जी।
0: सो आई सेट अप माय ओन फिल्म प्रोडक्शन कंपनी व्हिच इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग उसमें फिल्में बनाते हैं, कॉर्पोरेट जिंगल्स करते हैं, कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाते हैं। फिर जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हुआ 1991 में, मैं एंकरिंग में चला गया, शोज को एंकर करने शुरू किया, और मुझे अवसर मिला भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने के लिए, कलाम साहब का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ भी मैंने काम किया, जगजीत सिंह के साथ मैंने 32 साल काम किया,
1: बहुत बड़ा,
0: अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैंने 10 से ज्यादा कम से कम इवेंट्स किए होंगे एज एन MC एंड एज एंकर। अब फिर मैं रेडियो मिर्ची पहुंच गया, तो जैसे एक लक्कड़ नदी में घूमता घामता पहुंच जाता है, वैसे मैं भी पहुंच गया रेडियो मिर्ची। सो आई टू डू अ शो कॉल लल्लन भैया ऑन इन टू वॉइसेस ऑन अ संडे स्पेशल। उसमें वो लल्लन जो है वो चांदनी चौक का कैरेक्टर है। कहाँ जा रही है, क्या कर रहा है,
1: क्या बात
0: है, बोल दियो, चटक मारे इसको। और अभिनव चतुर्वेदी से वो बात करता था।
1: मतलब यू समझ लीजिए कि आप इस चीज के जनक हैं। आपको देख के रौनक ने शायद ऐसा किया होगा, या आपको देख के हम लोग कुछ ऐसा कर पा रहे हैं। न्यू जनरेशन भी कहीं ना कहीं ड्यूअल वॉइस के साथ काम कर रही है, तो हम तो भीष्म पिता में आपको कहेंगे।
0: देखिए मैं अपने आप को और भी सिंपल कर लूं, इसकी उत्पत्ति कहां से, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारे यहाँ भारत में टेलीविजन पे कोई पेयर्ड कॉमेडी नहीं रही। जैसे बाहर आप देखें तो लॉरेल हार्डी या बड एबट कोस्टेलो की जो क्लासिक सीरीज होती है, भारत में अभी तक टेलीविजन में कोई डबल कास्टिंग नहीं हुई। जैसे सत्यन हरी में बना रहा हूँ, तो हम लोग जो पहले दिन ऑडिशन करने पहुंचे रेडियो मिर्ची, तो इंग्लिश में कर दिया, ओके हो गया, हिंदी में कर दिया, ओके। मैं बैठा हुआ था गर्मी का मौसम अपनी गाड़ी के अंदर
1: जी।
0: बहुत ही पक गया था, मैंने कहा यार अभी तक कोई नहीं। सर यार ये चांदनी चौक का दिल्ली का चैनल है, जरा सोचा, दिमाग लगाया दिल्ली के चैनल में क्या करना चाहिए। तो दिल्ली की असली पहचान पुरानी दिल्ली है। पुरानी दिल्ली से कैरेक्टर लिया लल्लन, वो हैप्पी गो लकी बंदा है, वो खुद भी कपड़े पहन लेता है, किसी की शर्ट उतार के पहन लेता है बड़ा। और वो जो जहाँ रहता है उसका, हमने क्या किया उसकी गली का नाम दिया 98.3। उसके घर का नाम था 98.3। बोले उससे पूछता हुए तुम्हारे तुम कहाँ रहते हो, 98.3 मतलब क्या है सर, कोई एड्रेस होता है 98 एड्रेस होता है 99 98.3 खत्म हुई तो फ्रीक्वेंसी हमारी। तो यू नो वो एक बड़ा हैप्पी प्रोग्राम था और उसको मैं ही लिखता था
1: जी।
0: तो हमारे एक मित्र हैं आप पार्टी वाले पुराने आशुतोष, तो आशुतोष के साथ मैं क्रिकेट मैच खेल रहा था, तो आशुतोष भैया ने मुझे कहा, क्राई का मैच था, ये ललन और अभिनव आप ही करते हो, और जिस तरह से उन्होंने कहा, मैंने कहा तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि मैं ललन भी करता हूँ, तो कहते क्या जरूरत है अभिनव चतुर्वेदी को किसी एक घटिया आदमी से 20 साल काम करने के बाद गाली खाने की ऑन एयर। सो ही क्वाइट could relate to that part, कि ये वही कैरेक्टर है। और वो 3 साल प्रोग्राम चला एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द, मेरे लिए सबसे थेरेपी का भी उसने काम किया, कि एक तो व्यंग कॉमेडी और साथ साथ में सोशल इश्यूज को उठाना इंफॉर्मेशन के टूल पर। और इसमें आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक हमारे यहाँ एक वो जो चीज़ एल से होती थी उसको ओन कर लेता था, कि मतलब हमारी है। कहते हैं अभिनव जी जितनी गाड़ियाँ देख रहे हो ना रोड पे चलती हैं, जिस जिसके पीछे एल लिखा रहा था ना, हमारी लल्लन मोटर स्कूल की है। अब आप सोचिए कहीं से किसी का लेना देना नहीं, और ये लड़कियां ना बड़ी टेढ़ी चलती हैं, राइट का निशाना करके लेफ्ट पे चली जाती हैं, जरा धीरे चलियो। तो क्या होता है कि वो सारा का सारा जो रोड पे होता था
1: वो आप कैच कर,
0: अरे कहीं मिल जाए तो बता दीजिए हमारी मोटर स्कूल के हैं, ठोक दो ठोक दो, और जान बची रहनी चाहिए,
1: क्या बात है,
0: गाड़ी तेरे पर हो जाएगी, जान जाए पर वचन न जाए, यू नो दैट काइंड ऑफ सोशल एंगल से। और वो 3 साल बहुत हैप्पी स्कूल था। एक यहाँ तक कि एक पिक्चर में अभिषेक बच्चन का नाम था लल्लन, तो वो अभिनव चतुर्वेदी को गोली देता है, कहता आज मैं एयरपोर्ट पे ना मुझे लल्लन मिल गया था, कि लल्लन तो तुम ही हो, यानी वो आता अभिषेक, अच्छा अभिषेक कौन, अरे बच्चन, अच्छा मतलब दिल्ली सुन रहे हैं आप, अभिषेक बच्चन अभी तेरे से मिलेगा क्या, तेरी मिला कैसे नहीं था, और रात को 12:30 बजे आ गया हमारे पास,
1: आ गया, क्या बात है,
0: रात के 12:30 बजे कहाँ पहुंचा, अरे भाई 98.3
1: जी
0: साकड़ से उसने दरवाजा खटखटाया, बोले मैं कमे, हमने कहा आजा भाई चांद कहाँ से आ रही है, बोल क्या चाहिए तुझे, ऐसा मैं चाहता हूँ ना मेरी नई फिल्म आ रही है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना नाम लेंड कर दो, अच्छा मतलब तुमने उधार मांग लिया उससे, उसने तुमसे और नाम ही इतना बड़ा उधार
1: क्या बात है।
0: तो फिर वो कहता है कि कहता नाम तो ले जाए पर ब्रांड को बट्टा नहीं लगना चाहिए, फिल्म सुपरहिट होनी चाहिए, नाम हमारा नाम इन्वॉल्व है। सी यू नो अ मैन हु वाज नॉट एग्जिस्टिंग, और मुझसे लोग आगे कहते थे लल्लन से मिलना है, जबकि वो कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता था, मैं ही लल्लन था, मैं ही अभिनव था,
1: जिसमें एक जान।
0: तो वो एक आर्ट है जो वेस्ट में बहुत पॉपुलर है, वेंट्रोकुलिज्म के नाम से, जिसमें आप अपनी आवाज को थ्रो कर सकते हैं, उसका सहारा लेते हुए फिर वो शो 3 साल चला, एंड आई रियली एंजॉयड इट। मैं तो खुद हंसता था वो शो लिख लिख के रात को, और मेरे घर वाले सोचते थे आदमी पागल हो गया।
1: नाइस सर। तो लिसनर्स, ये बात बहुत ज्यादा खिंच गई, यहाँ पर एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, सर पानी पी लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: इसीलिए तो कहता हूं,
1: यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो।
0: बाकी

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत।
2: उषा, मेरे पास भी एक छोटा सा करेक्टर होता है, ये बहादुरी जो कि नेपाल से आया।
1: ये सर एक छोटा सा करेक्टर मेरे पास होता जो मैंने कहा ना कि हम आप लोग को देखकर सीखकर बड़े हुए हैं और यहाँ कतई की भाषा सीख गया, यानी कि दिल्ली NCR की भाषा सीख गया। जो आपने ललन का जिक्र किया, मुझे सैयद जाफरी साहब का वो वाक्य याद आ रहा है कि एक फिल्म आ रही थी, जिस तरीके से उन्होंने रिसर्च किया वो भी वहीं पहुंचे, दिल्ली पहुंचे, चांदनी चौक पहुंचे, उस करेक्टर को उन्होंने उठाया, क्या कर रही है, कैसे जा रही है वगैरह वगैरह, उस तरीके से वो फिल्म में लेकर चले गए। ऐसी जब मैं कुछ करने जा रहा था तो मैं मथुरा के करेक्टर को उठाना चाह रहा था या फिर कुछ और खास उठाना चाह रहा था, मैंने बहादुर को पिक किया जो कि नेपाल से आता है और यहाँ की भाषा सीखता है, मिक्स होता चला जाता है। सो लिसनर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे स्टूडियो में अभिनव चतुर्वेदी जी जो कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे एंकर हैं, अच्छे क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट आपने खेला है, MC हैं और एंकरिंग की यूँ समझिए कि हमें बारीकियाँ सर से सीखनी चाहिए। जब मेरी मुलाकात सर से हुई फेस टू फेस, मैं कहने वाला था लेकिन

0: अब मैं कह देता हूँ, सर माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, आप आवाज के धनी भी हैं, आप हरफन मौला हैं, कैसे आवाज को मेंटेन करते हैं और कैसे हमें आवाज का ख्याल रखना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहला आवाज को बचा के रखना चाहिए पानी की तरह
0: जी,
1: आवाज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आपको सब खाना चाहिए,
0: सब खाना चाहिए,
1: सब खाना चाहिए।
0: लोग कहते हैं खटाई नहीं खाना चाहिए, ठंडा नहीं खाना,
1: जैसा है जितना आप गले को अगर आप तंग नहीं करेंगे तो आवाज नहीं आएगी। मैं आपको मकसद बता देता हूँ
0: जी,
1: एग्जाम्पल के सहित, इसका प्रमाण भी है मेरे
0: जी, जी जी।
1: भारत में जितने शास्त्रीय गायक हुए हैं क्लासिकल के, वो सब अपनी सुपारी अपने पास रखते हैं और लौंग और सुपारी खाते हैं।
0: लौंग सुपारी,
1: सुपारी की तासीर बेसिकली क्या है, वो खरज पैदा करती, खरज पैदा करती, जो रेशे सुपारी के वोकल कॉर्ड्स को खोलते हैं, उसकी सारी हस्क जो है वो सुपारी खाने से आती है। सुपारी खाने से,
0: ये कच्ची भीगी कैसे?
1: कच्ची सूखी सुपारी,
0: सूखी सुपारी,
1: गीली भी आप खा सकते हैं लेकिन सूखी सुपारी, सुपारी इसके जितने वोकल कॉर्ड्स के रेशे हैं वो सब खोलती है।
0: अब आप ये बताएं कि क्या उसको चबाने से या उसका रस लेने?
1: कुछ भी करने से उसको फर्क नहीं पड़ता।
0: अच्छा।
1: लेकिन आप किसी के हाथ से सुपारी नहीं लेंगे, बिकॉज सुपारी में बहुत सारा काम होता है, कभी पान भी किसी से नहीं लिया
0: जी, जी।
1: रोली मिला के उससे कुछ लोग टोटका कर देते हैं, आवाज चली जाती है। जितना आप अपने गले को उसको तोता बना के रखेंगे वो उतना तकलीफ करेगी, बिकॉज गले का ताल्लुक सीधा ईयर, नोट, नोज, थ्रोट। आपका वैसे भी नाक बंद होगी तो आपके गले पे असर पड़ेगा, बिकॉज दोस थ्री आर मेडिकली इंटरकनेक्टेड। एंड उसको आवाज को बनाना, ऑर्केस्ट्रेट करना, वो एक अलग चीज, क्योंकि हम फिर गायकी का भी प्रयोग करते हैं इसमें। हम लोग जब गाते हैं, जैसे मैं गाता हूँ तो मुझे गाने का शौक है
0: जी।
1: तो मेरी आवाज की टोनालिटी किस सिंगर के साथ जा सकती है, मैं हाई पिच पे नहीं गा सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दो गजल का एक शेर सुना देता हूँ
0: जी, प्लीज।

0: क्या बात है माशाल्लाह।
1: तो क्या है कि आपको अगर म्यूजिक की भी ग्रामर है तो उसके उतार चढ़ाव, उसका क्रिसेंडो, उसका नीचे उतरना, तो आप जब मंदिर सप्तक में गाएंगे नीचे करके तो अलग हो गया, फिर दूसरी जैसे वो पंकज जी की कोई

0: बहुत अच्छा, लवली। आज हमारा दिन बन गया, दिन।
1: एक उस्ताद के बीच में हम बैठे हैं और एक अनुभव के साथ आप आते हैं और बहुत बड़ा अनुभव है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, जाना होगा, समझा होगा। और खासकर जहां स्टूडियो में साथ भी तीन इंटर्न जुड़े हुए हैं, वो भी ये साक्षात्कार जब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में उसको आत्मसात कर लेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लेकर जा पाएंगे। अभिनव सर, आप हमारे स्टूडियो आए, बहुत बारीकी से आपने अपनी चीजें बताई हमें, हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप हेल्दी रहें।
2: बहुत बहुत अनेक आभार आप सभी का। और मशीन्स तो मशीन्स हैं, इनसे काम लेना भी हमें आता है। भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हम इन्हें मशीन बनाई और हम इनसे काम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी, आपने बुलाया एंड छोटी सी मुलाकात की। इसी तरह सुनो शारदा, सुनते रहिए।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. Oh,

टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:08 हो चुके हैं, 23 तारीख है। हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कल रिमझिम रिमझिम बारिश हुई जिसकी वजह से मौसम खुशनुमा हुआ। आज यानी कि 23 जुलाई को ग्रेटर नोएडा के आसपास अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और दिन भर आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। छुटपुट गरज के साथ आंधी पानी या यूं कहें कि बौछारें पड़ने की संभावना है। तो कुल मिलाकर आज या कल या आने वाले समय में यानी कि बारिश के मौसम में आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा। और हर रोज मैं बताता हूँ, बार बार दोहराता रहता हूँ कि ऑन रोड हमें गड्ढे नजर नहीं आते जिसकी वजह से घटना दुर्घटना कर जाती है, वहां सावधानी बरतिएगा। और नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं यानी कि हमें नाले भी नजर नहीं आते, वहां पर भी घटना दुर्घटना घट सकती है, तो वो भी सोच समझ कर आप आगे बढ़ेगा। और एक और खास बात, जब बिजली यानी कि पोल में जब करंट उतरता है तो वहां पर जान माल का नुकसान होता है, उससे भी आप अपने आप को बचा कर रखिएगा। और वर्तमान समय में हम ये देख रहे हैं कि खाने पीने का बहुत ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखेंगे तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखना उत्तम है, बहुत जरूरी है। इसलिए एक विशेष कार्यक्रम होता है स्मार्ट के सौजन्य से सेहत सही लाभ कई, तो उसको सुनना ना भूलेगा हर रोज सुबह 10 बजे। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। 9:10 23 तारीख और आज का दिन बृहस्पतिवार, बोले तो गुरुवार थर्सडे का दिन। आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। वो मौज बादल की आवाज सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: गगन खोखरी फतेह।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार, 18 मिनट हो चुके हैं, 23 तारीख है और क्या है खास, उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। खास बात है कि दिल्ली NCR में इस वक्त कुछ रैली चल रही है, कुछ मार्च निकाले जा रहे हैं, तो एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। उस बात को आप नजरअंदाज ना करें और घर से निकलने से पहले ट्रैफिक पुलिस के बारे में, यानी कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जो आधिकारिक वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल है, यानी कि एक्स, उसके जरिए आप अपडेट हासिल कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो सेवा अपडेट निकलकर ये सामने आ रही है कि सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश को ध्यान में रखते हुए 16 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। ब्लू और येलो लाइन यानी कि राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, 12 खंबा रोड और सुप्रीम कोर्ट है ना, और इसके बाद वॉलेट और जो दूसरी लाइन है केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, ITO, खान मार्केट, जनपथ, लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ और जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम। तो इस तरीके से आप बहुत सोच कर समझ कर घर से निकलेगा, यानी कि ये जब आपके रूट बंद है तो आप वैकल्पिक रास्ते का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ रास्ते हैं जहां डायवर्जन किया गया, यानी कि रफ़ी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आज़ाद रोड और राजेंद्र प्रसाद रोड पर जो ट्रैफिक है पूरी तरह प्रतिबंधित या बेहद धीमा है। कनॉट प्लेस के आसपास अशोका रोड के कामराज मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग, ताल कटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग और रकाबगंज गुरुद्वारा रोड, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको बहुत सोच कर समझ कर आप घर से निकलेगा। यानी कि जब भी निकलें तो थोड़ा मार्जिन, यानी कि 5 से 10 मिनट पहले निकलिए, और ऑफिस से जब निकल रहे हैं तो इस बात का तब भी ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो अपडेट ये सामने आ रही है कि करीब करीब 1 घंटा पहले आप निकलेगा। वक्त एक छोटे से इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने को सुनाने का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:20 हो चुके हैं और ये खूबसूरत गाना कैसे बताएं, अजब प्रेम की गजब कहानी, आतिफ असलम की आवाज, सिर्फ सुरु शारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग।

0: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
1: माँ जी, मुझे टीबी है।
0: टीबी? और छुपा कर रखा?
1: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
0: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें। टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। बिल्कुल आपने सही सुना कि सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, जबरदस्त इंफोटेनमेंट के साथ हम रहते हैं आपके साथ। तो कैसा लगता है सुनो शारदा 90.8 FM? आप हमें एक छोटा सा कॉल कर बता सकते हैं। नंबर है वही जाना पहचाना सुना सुनाया जो अक्सर बार बार हम आपको बताते रहते हैं 120-40-60-205 शहर का STD कोड 40-60-205 ये हमारा नंबर। इसके जरिए आप हमसे संपर्क सूत्र के माध्यम से संपर्क साध सकते हैं। और इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप सबके लिए खुले हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे क्या खास हो रहा है वो जानना समझना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप युवा हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अगर आप हैं तो ये वैकेंसीज जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं आपके लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए पुलिस भर्ती की जो योजना की तैयारियां हैं वो तैयारियां कर ली हैं और 21,000 पदों पर भर्ती करने की घोषणा, आधिकारिक घोषणा उन्होंने कर दी है। और इसके लिए जो आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उसकी जो नोटिफिकेशन है, सारी मालूमात आप वहां से हासिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से ये परीक्षाएं कराई जाएंगी और जिसमें जो वैकेंसीज हैं, कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर है, जेल वार्डर है, रेडियो कैडर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क और बहुत सारी टेक्निकल वैकेंसीज भी सामने आ रही हैं। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रिटर्न बहुत अच्छा हो, आप फिजिकल की तैयारियां शुरू कर दीजिए और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर शारदा 90.8 FM। चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं अपार शक्ति खुराना की आवाज में लफ्जा, ब्यूटीफुल ट्रैक सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर, सिंपल सोबर सॉन्ग सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
1: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
0: क्या है राज?
1: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ, दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार कभी हुआ नहीं करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते ये भी है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, और बस कोशिश करते जाइए, प्रयास करते जाइए, क्योंकि आपके हमारे हाथ में यही है, और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, वो दुनिया देखती जरूर है। वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ, और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 9:40 हो चुके हैं, 23 तारीख है हमारे आसपास, और क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरी हमारे सामने आ रही है, तो मुझे लगा कि इस कोट के साथ उस बात को मैं रखता हूं। घर में एक बच्चे की आर्थिक तंगी थी, उसकी माँ चाहती थी कि वो डॉक्टर बने, उसने दिन रात एक किया, साथ ही साथ कमाई का साधन भी ढूंढा, और उसके बाद नीट क्वालिफाई उसने कर लिया, और इस तरीके से वो आने वाले समय का डॉक्टर होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी सक्सेस स्टोरी हमारे सामने आती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि आप साधन संसाधन अभाव इन सब से निकलकर जब आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी कहानी को दुनिया सुनती है, जानती है, समझती है, और आपसे प्रेरित होकर आने वाला जो भविष्य है, जो यूथ है, वो प्रेरित होकर दिन रात मेहनत करता है, और उसके बाद उसकी सफलता, वो कहते हैं ना, वो सफलता कदम चूमती है। तो इसलिए कोशिश करते जाइए, मेहनत करते जाइए, और इसीलिए बहुत जरूरी होता है एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां एक छत के नीचे रहकर बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसीलिए कहूंगा कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को, समझने को मिलेंगे। जब आप यहां विजिट करेंगे तो नजदीकी से जान पाएंगे कि कैसा माहौल है, किस तरीके से एक्टिविटीज होती हैं, कैसा प्लेसमेंट है, और भी बहुत कुछ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो कही जाएगा, बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का सुरु शारदा 90.8 FM with me, मेरे यानी गगन के साथ।

फिल्म का नाम, हाँ फिल्म का नाम, बहुत ही खूबसूरत गाना, आतिफ असलम की आवाज, सैयद कादरी की बोल, सिर्फ सुर शारदा 90.8 एफएम पर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूँ गगन, आपके साथ 9:52 हो चुके हैं, 23 तारीख है, यानी कि बृहस्पतिवार, बोले तो थर्सडे का दिन। और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचे, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और वर्तमान समय में अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा, और ऐसे समय में कहा जा रहा है, और सच बात तो ये कि ऐसे समय में एक पौधे की बढ़वार होती है, एक पौधा बहुत खिलता हुआ नजर आता है, एक पौधा जब आप उसको, एक बीज को रोपते हैं, सींचते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, जब वही बीज बड़ा होता है, पौधे की शक्ल लेता है, तो वहां आप एक वट वृक्ष का रूप देखते हैं, वहां गाड़ियां लोग पार करते हैं, वहां उस पेड़ के नीचे सुस्ताना चाहते हैं, है ना। और जब आपको बड़ी खुशी होती है कि ये वो पौधा, ये वो बीज मैंने रोपा था, आज एक वट वृक्ष का रूप इसने धारण कर लिया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए, है ना। एक खुशी मिलती है, जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसका जब हम ख्याल रखेंगे तो सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। चलिए, ग्रेटर नोएडा में क्या खास है इसके बारे में भी जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने ग्रेटर नोएडा की बात ना करें। आगामी जो बड़े आयोजन है, यानी कि जिसको हम कहते हैं अपकमिंग इवेंट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, यानी कि IBET एक्सपो 2026 बायो एनर्जी और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए 11 से 13 अगस्त तक नॉलेज पार्क के आसपास, यानी कि इंडिया एक्सपो सेंटर पर एक मेला लगने जा रहा है। और जब मेला लगेगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग आएंगे और अपनी अपनी चीज़ों की एग्जीबिशन वहां देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि आपको वहां शिरकत करनी चाहिए, जाना चाहिए, है ना। और जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप मालूमात हासिल कर पाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजी हमारे बीच आ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: माशाल्लाह सुभान अल्लाह इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं ले रहा हूँ अनुमति समीर खान के बोल प्रियंका एंड आर बाला के, मतलब उन्होंने ये इसको लिखा है और जो आवाज दी है वो है समीर खान की, समीर टंडन कंपोजर। और टिप्स का लेबल ओनली ऑन शारदा 90.8 एफएम। आने वाला दिन आपके लिए शुभ में हो, मंगल में हो, इसी दुआओं के साथ शुभकामनाओं के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। क्या बात है, क्या बात।
1: मिले बिना जाएगा कितना।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका दोस्त शशि कपूर। दोस्तों, पिछले दो कार्यक्रमों में हमने गर्भावस्था के दौरान खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS, पोषण और मध्यम तथा गंभीर एनीमिया में IV, FCM जैसे उपचार विकल्पों के बारे में बात की। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद माँ का क्या? क्या प्रसव के बाद कमजोरी होना हमेशा सामान्य है? क्या खून की कमी प्रसव के बाद भी बनी रह सकती है? और इसका असर माँ और नवजात शिशु दोनों पर कैसे पड़ सकता है? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं सिहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। तो सबसे पहले आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यानी कि गगन गौतम और यहाँ जो मेरा रोल है वो है सिहतिया सिंह। तो हम यानी कि मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को प्रणाम जी। टीकन देवी जी, आप कैसी हैं?
2: हाँ, मेरी तरफ से भी श्रोताओं को बहुत बहुत प्रणाम। और हम लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि स्मार्ट के साथ मिलकर हम जो कार्यक्रम बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि हम समुदाय के लोगों को जागरूक करें और स्वास्थ्य संबंधी जो भी मैसेजेस हैं हम आप तक पहुँचा पाएं। मैं हूँ दीपाली और टीकन भाभी के रूप में मैं इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हूँ। महिलाओं को जागरूक करना, उन सभी योजनाओं के बारे में आपको बताना जो सरकार चला रही है, हमारे आसपास के CSC PSC केंद्रों पर क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हैं, आशा बहनें आपकी क्या मदद कर सकती हैं, हमारा रेडियो आपकी क्या मदद कर सकता है, इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर हम आपसे जुड़े हुए हैं। इसमें स्मार्ट की बहुत अहम भूमिका है और साथ में हमारी भी।
0: बिल्कुल। तो सिहतिया जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद कमजोरी होना तो सामान्य बात है, क्या ये सही बात है?
1: देखिए, प्रसव के बाद शरीर को आराम और रिकवरी की जरूरत होती है, इसलिए कुछ थकान महसूस होना सामान्य हो सकता है। लेकिन अगर कमजोरी लगातार बनी रहे, चक्कर आए, सांस फूलने लगे, रोजमर्रा का काम मुश्किल लगे या महिला बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस करे तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपके कहने से पहले मैं एक और बात ये कहना चाहूंगा, इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे समय में ध्यान रखना महिला का बहुत जरूरी है।
0: यानी ये खून की कमी का संकेत भी हो सकता है?
1: जी बिल्कुल। और यही कारण है कि प्रसव के बाद भी माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
0: और अब टीकन देवी जी, आपसे भी ये जानना चाहूंगा, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को इस बात का महत्व समझा सके?
2: हाँ, मेरे पास एक कहानी है और वो कहानी हमारे ही इलाके की कहानी है। हम आपको आज बताएंगे शवाना के बारे में। शवाना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। घर में सब खुश थे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद शवाना को लगातार कमजोरी रहने लगी। वह जल्दी थक जाती, बच्चे को गोद में लेकर ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी। घर वालों ने कहा, अभी अभी बच्चा हुआ है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब स्वास्थ्य कर्मी ने घर आकर हालचाल पूछा और आगे की जांच की सलाह दी, तब पता चला कि उसे एनीमिया है।
0: इसके आगे क्या हुआ फिर?
2: फिर क्या हुआ, उसे स्वास्थ्य केंद्र से उचित सलाह मिली, परिवार ने भी उसका सहयोग किया, धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर हुई और वह अपने बच्चे की देखभाल अधिक आराम से कर पाई।
0: यानी प्रसव के बाद की कमजोरी को भी गंभीरता से लेना चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल, प्रसव के बाद की जो कमजोरी होती है उसे गंभीरता से लेना चाहिए और उसमें परिवार का सहयोग जरूरी है। साथ में ये जानकारी भी जरूरी है कि पास के CSC PSC केंद्रों से क्या क्या सुविधाएं ली जा सकती।
0: बिल्कुल। और सिहतिया जी, प्रसव के बाद एनीमिया का असर केवल माँ पर पड़ता है या बच्चे पर भी?
1: शशि कपूर साहब यानी कि RJ साहब, सवाल आपका बहुत अच्छा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि माँ और बच्चे दोनों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर माँ लगातार कमजोर रहेगी तो उसकी रिकवरी प्रभावित हो सकती है।
0: अगर हम बच्चे की बात करें तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: देखिए साहब, जब माँ स्वस्थ रहती है तो वो अपने नवजात शिशु की देखभाल बेहतर तरीके से कर पाती है। इसलिए माँ का स्वास्थ्य और बच्चे का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: यानी स्वस्थ माँ स्वस्थ परिवार की नींव है।
1: भाई बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या प्रसव के बाद भी जांच करवानी चाहिए?
1: देखिए जवाब है हाँ। अगर स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर सलाह दें या महिला में कमजोरी और अन्य लक्षण बने रहें तो जांच करवाना नितांत आवश्यक है दोस्तों।
0: यानी प्रसव के बाद स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क खत्म नहीं होना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। गर्भावस्था के दौरान मिली सलाह और प्रसव के बाद की देखभाल दोनों मिलकर अच्छे स्वास्थ्य परिणाम देते हैं दोस्तों।
0: बिल्कुल। और टिकन देवी जी, शवाना की कहानी सुनकर एक बात समझ आती है कि कई बार महिला खुद भी अपनी परेशानी को नजरअंदाज कर देती है।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, कई बार महिलाएं खुद भी अपनी परेशानी को नजरअंदाज कर देती हैं। उन्हें लगता है कि हमारे परिवार में कोई सुनेगा नहीं या ये समाज हमारा साथ नहीं देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रसव के बाद अक्सर महिला का पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है। वह सोचती है पहले बच्चे की जरूरतें पूरी होनी है, मेरी तकलीफ तो बाद में है, उसे बाद में देख लेंगे। लेकिन यही सोच कई बार परेशानी बढ़ा देती है।
0: यानी माँ खुद को सबसे आखिर में रख देती है?
2: हाँ, माँ खुद को सबसे आखिर में रख देती है। हमारे समाज में ये बहुत आम है। अगर बच्चा रो रहा है, घर का काम हो, मेहमान आ रहे हो, तो महिला अपनी कमजोरी, चक्कर, थकान सबके बारे में बताने से हिचकती है। कई बार उसे लगता है कि लोग कहेंगे कि वह शिकायत ज्यादा कर रही है या परिवार पर ध्यान नहीं देना चाहती।
0: लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए?
2: बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महिला के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है, क्योंकि जिस घर में माँ स्वस्थ होती है वहाँ बच्चा भी स्वस्थ रहता है। और किसी भी महिला का जो स्वास्थ्य होता है वो परिवार के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि महिला कहीं ना कहीं पूरे घर को संभाल कर चलती है। बच्चे की देखभाल जितनी जरूरी है उतनी ही माँ की देखभाल भी जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अब सियतिया सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा कि प्रसव के बाद महिला के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, क्या ये भी उसकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं?
1: देखिए एक्सपर्ट कहते हैं बिल्कुल, बच्चे के जन्म के बाद महिला की दिनचर्या पूरी तरह बदल जाती है। रात में कई बार उठना पड़ता है, आराम कम हो जाता है और शरीर प्रसव से उबर रहा होता है, और साथ ही नवजात शिशु की देखभाल की जिम्मेदारी भी होती है दोस्तों।
0: यानी ये समय केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
1: बिल्कुल, इसलिए इस समय परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर महिला को आराम का समय मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा जाए तो उसकी रिकवरी बेहतर हो सकती है।
0: और टिकन देवी जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या परिवार कभी अनजाने में ऐसी बातें कह देता है जिससे महिला अपनी परेशानी बताने से बचने लगती है?
2: हाँ बिल्कुल, ऐसा अक्सर होता है। जैसे कोई कह देता है कि हमारे समय में तो ऐसा ही होता था, थोड़ी कमजोरी तो सामान्य सी बात है, इतना मत सोचो या सब ठीक हो जाएगा। ये सब बातें सुनकर महिलाएं अपनी परेशानी परिवार के बीच में रखने से या बताने से हिचकती हैं। सुनने में तो ये बातें सामान्य लगती हैं, लेकिन जो महिला इससे गुजरती है वही जाने। महिला अपनी समस्या बताना बंद कर देती हैं, जिसका पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ता है।
0: यानी एक महिला की बात सुनना भी उसकी देखभाल का हिस्सा है?
2: बिल्कुल, महिला की बात सुनना, उसे समझना, उसकी मुश्किलों को, परेशानियों को जानना भी देखभाल का हिस्सा है। अगर महिला बार बार कह रही है कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या वह पहले से अच्छा महसूस नहीं कर रही है, तो ये सब गंभीर बातें हैं और उसकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सियतिया जी, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या प्रसव के बाद स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क बनाए रखना भी जरूरी है?
1: बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया, अब स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य कर्मी की सलाह, घर पर मुलाकात और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
0: यानी माँ की देखभाल की कहानी प्रसव पर खत्म नहीं होती?
1: बिल्कुल नहीं, वास्तव में प्रसव के बाद का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना गर्भावस्था का समय।
2: मैं तो सभी परिवारों से ये कहना चाहूंगी, जब घर में नया बच्चा आता है तो केवल बच्चे की खुशियां मत मनाइए, उस माँ का भी ध्यान रखिए जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है। उसकी सेहत, उसका आराम, उसकी जरूरतें भी परिवार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
0: सचमुच स्वस्थ माँ ही नवजात शिशु को सबसे अच्छा सहारा दे सकती है। टीकन देवी जी, इस समय परिवार की भूमिका क्या होती है?
2: परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार पूरा ध्यान बच्चे पर चला जाता है और माँ की जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन परिवार को याद रखना चाहिए कि जितनी नन्हे शिशु की देखभाल जरूरी है, उतनी माँ की भी देखभाल जरूरी है।
0: तो एक माँ के लिए परिवार क्या क्या कर सकता है?
2: सबसे पहले माँ को पर्याप्त आराम मिले, इसका ध्यान रखा जाए। दूसरा, उसे समय पर पौष्टिक भोजन मिले। तीसरा, अगर स्वास्थ्य केंद्र जाने की जरूरत है तो परिवार उसका साथ दे। और चौथा, अगर कोई दवा या पूरक खुराक दी गई हो तो उसे नियमित रूप में लेने में मदद करे। और सबसे जरूरी, उसकी कमजोरी, मुश्किलों और परेशानियों को नजरअंदाज ना करें, सब मिलकर सुने और महिला के स्वास्थ्य को शिशु के स्वास्थ्य की तरह प्राथमिकता दें।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। और हमारे जो सुनने वाले हैं और जो भी जिनके घर पर जो नवजात शिशु आया है, तो जरूर इन बातों पर गौर करें, ध्यान दें और इनको अपनाएं। अब सियतिया जी, आपसे जानना चाहूंगा कि हमने पिछले कार्यक्रमों में IFA, MMS और IBFCM के बारे में बात की थी। क्या प्रसव के बाद भी डॉक्टर की सलाह का पालन करना जरूरी है?
1: बिल्कुल, हर महिला की स्थिति अलग होती है, इसलिए आगे की देखभाल, दवाओं या पूरक खुराक के बारे में वही सलाह माननी चाहिए जो स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर दे।
0: यानी अपने मन से दवा बंद या शुरू नहीं करनी चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, खुद से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र की सलाह सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों।
0: तो कोई भी दवा खाएं तो जरूर डॉक्टरी की सलाह मशवरा करके उनसे खाएं। दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके स्वास्थ्य को पीछे छोड़ दिया जाए।
2: और हाँ, अगर प्रसव के बाद कमजोरी बनी हुई है या महिला को चक्कर आते हैं या शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा, तो इसे सामान्य मानकर टालिए मत, इसका इलाज जरूर कराइए।
1: देखिए साहब, समय पर जांच, सही सलाह और उचित देखभाल से माँ की रिकवरी बेहतर हो सकती है। और जब माँ स्वस्थ होगी तो बच्चे की देखभाल भी बेहतर तरीके से कर पाएगी।
0: बिल्कुल सियतिया भैया, हमारी दोस्त प्रियंका अभी जल्दी ही एनीमिया को लेकर डॉक्टर अमर निधि से मिली थी। क्यों ना हम एक एक्सपर्ट की दृष्टिकोण को भी जानें।
1: अरे नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल सुनते हैं डॉक्टर अमर निधि का एनीमिया पर क्या कहना है। बहुत अच्छी जानकारी दोस्तों, आइए सुनते हैं ये खास जानकारी डॉक्टर के माध्यम से।
3: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमर निधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
4: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
3: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
4: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
3: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
4: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें। इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
3: तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
4: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
3: तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
4: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं। इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
3: मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
4: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में, किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
3: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
4: ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
3: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि अनीमिया, मतलब इसका जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है, निशुल्क जांच कहाँ होती है?
4: इसको मैं 2 भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नजदीकी सब सेंटर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जाएं, तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं, उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
3: तो मैम, जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है?
4: जी हाँ, बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
3: मैम, एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं, उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
4: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
3: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
4: आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन जरूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते, इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को, ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें, इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
3: एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
4: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं, 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो भी मां बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक जरूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती, इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती है, तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है।
3: थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे, अच्छे से उसको अमल भी करेंगे।
4: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो सुनाना दोस्तों, एनीमिया क्या है और क्यों होता है? तो दोस्तों, चलते चलते आज के कार्यक्रम की 4 महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, प्रसव के बाद भी खून की कमी बनी रह सकती है। दूसरी, लगातार कमजोरी या चक्कर को नजरअंदाज ना करें। तीसरी, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। चौथी, माँ को पौष्टिक भोजन, आराम और परिवार का पूरा सहयोग दें।
2: हाँ, क्योंकि माँ की सेहत पर ध्यान देना बच्चे के भविष्य पर ध्यान देना है।
1: और समय पर पहचान तथा उचित देखभाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम ला सकती है।
0: बिल्कुल, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई से मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जागरूक रहिए और सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। फिलहाल के लिए नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
3: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
4: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
3: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
2: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति, प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
5: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

का कारण बन सकता है। इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है, अब इसे छान कर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
3: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
6: क्या आपको पता है गर्भवती महिला को प्रसव के लिए समय से अस्पताल ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है
5: और वो भी बिल्कुल निशुल्क। गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने के लिए 102 नंबर पर फोन करके आप एम्बुलेंस सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
6: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
5: शिशु की सही देखभाल से
6: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है, अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें।

0: विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए। तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

किसान मित्रों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने का खतरा बना ही रहता है। इसका पूरा नुकसान हमारे किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। इन्हीं अनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से किसान भाइयों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जो इस प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हमारे किसान भाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर हमारे किसान भाई अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई का जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्य फसलें जैसे अनाज, बाजरा और दालें, तिलहन और बागवानी फसलों को कवर किया जाता है। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए हमारे किसान भाई अपने नजदीकी बैंक में जाकर के अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बस बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर उनकी फसल का बीमा हो जाता है। इसके अलावा अगर हमारे किसी भी किसान भाई के पास पहले से किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। और अब किसान मित्रों, बात करेंगे कि बीमा करवाने के बाद अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, आपकी फसल नष्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उसका मुआवजा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी। और अब आप जानना चाहते हैं कि अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। किसान मित्रों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए आपको सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई है, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। साथ ही आपको अपनी जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है। आवेदन करने के कुछ दिनों बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी आपके खेत का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करते हैं और जब सब कुछ सही पाया जाता है तो किसान भाई के बैंक अकाउंट में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है। तो इस तरह से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं बलराम बैसला।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे बलराम बैसला से ये रागनी। अब बात करते हैं FPO की, यानी कि किसान उत्पादन संगठन की, जो किसानों द्वारा बनाई गई एक सामूहिक संस्था है, जिसका उद्देश्य बाजार में किसानों की सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। ये एक पंजीकृत कानूनी संस्था है जो कृषि उत्पादों के सामूहिक एकत्रीकरण, इनपुट की थोक खरीद, बाजार तक सीधी पहुंच और मूल्य संवर्धन जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से किसानों को अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने में मदद करती हैं। हमारे सीमांत और छोटे और भूमिहीन किसानों को FPO के रूप में एकत्रित करने से बाजार संपर्क बढ़ाने में मदद मिली है, जिससे हमारे किसानों की आय और आर्थिक मजबूती में सुधार हुआ है। ये संगठन छोटे किसानों को संपूर्ण सेवाएं और सहायता प्रदान करते हैं, साथ ही विपणन, तकनीकी सेवाएं, प्रसंस्करण और खेती के अन्य पहलुओं को कवर करते हैं। FPO छोटे किसानों को एक साथ जोड़ते हैं और एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होते हैं। वो अपने सदस्यों की उपज को इकट्ठा करते हैं और सामूहिक रूप से बाजार में बेचते हैं। ये संगठन कृषि आदानों की थोक खरीद करता है, साथ ही ये संगठन हमारे किसान भाइयों को ऋण, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना किसान उत्पादन संगठन यानी FPO के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र निमचाना।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश। किसान मित्रों, खेत से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच करवाना बहुत जरूरी है। मिट्टी की जांच का मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के हिसाब से उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे कि उत्पादन बढ़े और साथ ही खेती में आने वाली लागत कम हो। किसान मित्रों, मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जांच कराई जाए। स्वस्थ शरीर के लिए जिस तरह सही खान पान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, उनकी अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। और इन पोषक तत्वों के बारे में हमें तभी पता चलता है जब हम अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं। उसी से ये बात सामने आती है कि हमारे खेत की मिट्टी में किन पोषक तत्वों की कमी है या फिर किन की अधिकता है, उसी के हिसाब से खेत में खाद का प्रबंधन किया जाता है। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि खेत से भरपूर पैदावार के लिए मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सुनील चौहान और उनके साथियों से ये रागनी।

सुनील चौहान और उनके साथियों द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
1: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
0: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं।
1: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निशुल्क पहुंचाएगी।
0: जब होगी सही देख

0: तभी तो आएगी खुशियाँ बेमिसाल।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
0: शिशु की सही देखभाल से
1: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दोस्त, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

सुनो शारदा 90.8 FM बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है, और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का, और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता असमान व्यवहार असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधू, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं, और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है, और यह भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं, जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
5: हिंसा को नो

0: नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: विश्व में भारत को परंपराओं और संस्कृतियों का देश कहा जाता है और दुनिया में अगर कभी भी महिलाओं को पूजने की, सम्मान देने की संस्कृति है तो उनमें सबसे पहला नाम भारत का आता है, क्योंकि हमारे देश की सभ्यता में, यहाँ की संस्कृति में महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है। परंतु फिर भी अपने देश में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। प्रत्येक दिन हजारों लाखों की तादाद में महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। कभी शारीरिक हिंसा, कभी मानसिक हिंसा, कभी यौन हिंसा और भी बहुत से प्रकार की हिंसाओं का सामना आए दिन महिलाओं को करना पड़ता है। हिंसा के इस रूप में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा का महिलाओं को सामना करना पड़ता है। हिंसा को नो की इस हमारी अगली कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं घरेलू हिंसा के बारे में। घरेलू हिंसा क्या है? अगर कोई महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो उसे किसकी मदद लेनी चाहिए? इन्हीं सब विषय के बारे में वन स्टॉप सेंटर की मैनेजर पूजा पांडे जी हमें विस्तृत जानकारी आज देने वाली हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं पूजा पांडे जी को।
2: पूजा पांडे केंद्र प्रबंधक वन स्टॉप सेंटर। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा सा टॉपिक डिसाइड किया है आज जिससे हम बात करेंगे और इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि घरेलू हिंसा नाम से तो सभी अवगत हैं, सबको जानकारी है थोड़ी बहुत, लेकिन ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है इसके बारे में शायद लोगों को इतना जानकारी नहीं है। तो बहुत अच्छा मौका मिला मुझे कि हम घरेलू हिंसा को डिटेल से जानेंगे। तो अब हम घरेलू हिंसा पहले समझ लेते हैं। घरेलू हिंसा से ज्यादातर लोगों का मतलब होता है कि जो उनके साथ ससुराल में हिंसा हो रही है इसको हिंसा कहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसकी परिभाषा होती है और

रचनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिससे उस महिला के पारिवारिक संबंध है या घरेलू संबंध है, उसका आना जाना है, वो एक परिवार की तरह है, और वहाँ पे अगर इस तरह की कोई भी हिंसा हो रही है तो उसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं।

का उपाय नहीं है तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 आया, जिसको परिभाषित करते हुए कहा गया है कि प्रतिवादी का कोई बर्ताव यानी जो अपोजिट पार्टी का है उसका कोई ऐसा बिहेवियर भूल या किसी और काम को करने के लिए नियुक्त करना घरेलू

किसको माना जाए कि इस चीज को वो पीड़ित है। तो इस कानून के पूरे लाभ को लेने के लिए ये समझना जरूरी है कि व्यक्ति व्यक्ति अथवा पीड़ित व्यक्ति है कौन। यदि आप एक महिला हैं और किसी व्यक्ति कोई दूसरा व्यक्ति जिसके साथ आप घरेलू नातेदारी में हैं के प्रति वो दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित या व्यक्ति व्यक्ति है। यानी कि कोई भी महिला है और उसके प्रति कोई भी दुर्व्यवहार, अभी मैंने ऊपर जो की बताए हैं जितने सारे हिंसा के प्रकार थे, उसमें किसी भी तरह की हिंसा इसके नातेदारों में से किसी पे भी की जाती है इसके प्रति, तो वो पीड़ित है। ठीक है, क्योंकि कानून का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू नातेदारी से उसके दुर्व्यवहार से बचाने के लिए है। इसलिए समझना जरूरी है कि घरेलू नातेदारी या संबंध है क्या। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें भी, आप ये कौन से संबंध है जिनसे हम कहेंगे कि हम घरेलू हिंसा के शिकार हो रहे हैं। तो मैं इसको एकदम इन शॉर्ट एकदम क्लियर कर दे रही हूँ। जैसे अब ये क्या है, रक्त जनित संबंध, जैसे माँ के लिए बेटा, पिता, पुत्री, भाई, मतलब बेटा हो गया, पिता हो गया, भाई हो गया, ये सब हमारे ब्लड रिलेशन के हैं। फिर विवाह जनित संबंध, मतलब ससुराल, जैसे सास, ससुर, ननद, देवर, भाभी, जेठ, है ना, ये हो गए। अब दत्तक ग्रहण, गोद लेने से उसके संबंध, अब ये तो दो देखिए सबको क्लियर थे कि जो ब्लड रिलेशन के होते हैं और जो ससुराल पक्ष होते हैं वो यदि आप पे कोई हिंसा करते हैं किसी भी महिला पे तो वो घरेलू हिंसा है। लेकिन अभी देखिए थर्ड पॉइंट और भी जोड़ दिया गया था कि दत्तक ग्रहण, मतलब जैसे मुझे गोद लिया गया है और मेरे प्रति उस घर के द्वारा हिंसा हो रही है, वो भी घरेलू हिंसा है। अगर हमारे, मतलब हम जिनके साथ रह रहे हैं, हमारा घरेलू संबंध है, तो हमारे ऊपर किसी भी यौनिक, मानसिक, आर्थिक, घरेलू किसी भी तरह की हिंसा करते हैं तो उसको हम घरेलू हिंसा मानते हैं। अब एक इसमें समझने वाली बात यह है कि एक लिविंग जो रिलेशन है उसमें भी अगर कोई हिंसा होती है तो भी वो घरेलू हिंसा ही कहलाएगी। जैसे लिविंग, उसका भी एक दिया गया है हमारे कानून में कि जैसे लिविंग संबंध कानूनी तौर पर अमान्य विवाह, उदाहरण के लिए पति ने दूसरी बार शादी की अथवा पति और पत्नी या शादी से संबंधित है और इस विवाह का कारण अवैध है, फिर भी अगर वो साथ में है और उस महिला पे अत्याचार हो रहा है तो वो घरेलू हिंसा का ही एक प्रकार है। घरेलू नातेदारी के दायरे में आने के लिए जरूरी नहीं कि दो व्यक्ति वर्तमान में किसी साझा घर में रह रहे हों। ये भी समझना है कि घरेलू नातेदारी के दायरे में आने के लिए जरूरी नहीं कि दो व्यक्ति वर्तमान में किसी कंबाइंड घर में रह रहे हों, साझा घर में रह रहे हों। मतलब यदि पति ने पत्नी को अपने घर से निकाल दिया हो तो भी यह घरेलू नातेदारी के दायरे में आ जाएगा। अगर हम अलग अलग रह रहे हैं फिर भी हम क्लेम कर सकते हैं ना कि इन्होंने मुझे अत्याचार करके निकाला है या इन्होंने मेरे पर शोषण किया है। अब व्यक्ति व्यक्ति के अधिकार, अब इसमें ये है कि अगर मान लीजिए किसी पे हिंसा हो रही उसे क्या करना चाहिए। इस अधिनियम को लागू करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है उनमें उनके इस कानून के तहत कुछ कर्तव्य है, जैसे या किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है तो उन्हें पीड़ित को निम्न अधिकारों के बारे में सूचना देना है। जैसे पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है, जैसे संरक्षण का आदेश, रुपए पैसे के लिए आर्थिक राहत, बच्चों के लिए कस्टडी का आदेश, निवास आदेश, मुआवजे की राशि का आदेश। इस तरह की जानकारी अगर वो महिला किसी भी अधिकारी, चाहे वो डीएम के पास जाए, चाहे वो संरक्षण अधिकारी के पास जाए, चाहे वो पुलिस के पास जाए, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर आए, तो हमें उन्हें ये जानकारी देनी होगी कि उनको इसके तहत क्या क्या अधिकार मिल सकते हैं। पीड़ित अधिकारियों द्वारा सेवा प्रदाताओं की सहायता ली जा सकती है। अब इसमें हम लोग आ गए वन स्टॉप सेंटर, क्योंकि पूरी तरह से महिलाओं के प्रति कार्य करने के लिए भी वोटेड में प्रतिज्ञाबद्ध है। तो हमारे पास ऐसी कोई महिला आती है तो हम उसको सबसे पहले इन अधिकारों की जानकारी देते हैं, है ना, और उसके तहत चाहे पुलिस में और चाहे कानूनी तरीके से लीगल एड दिला के उसको उसके अधिकार दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, अब पीड़ित सेवा, मतलब जो पीड़ित महिला है, हमारा कानून भी कहता है कि पीड़ित जो महिला है वो सेवा प्रदाता यानी कि चाहे वन स्टॉप सेंटर या सीधे डीएम सर के पास जाके संपर्क कर सकती है। ठीक है, अब इसमें कई सारे जो है

0: के रख लेते हैं घर वाले, है ना, तो उन बच्चों की कस्टडी हमको चाहिए। तो इस तरह की जो है चीजों को करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया गया है। ठीक है, घरेलू हिंसा को की पहली बात, एक पीड़ित महिला यदि बाहर निकलकर कोई शिकायत दर्ज करा रही है, हमें एक मानवीय संवेदनाओं के अनुसार ये एक बात सुनिश्चित करना है ना कि यदि कोई महिला घर से निकली है तो उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है, है ना। एक ये सेकंड चीज है, वो हमको एक रिटर्न एप्लीकेशन देती है, वो कहीं भी जाएगी, चाहे संरक्षण अधिकारी के पास जाए, चाहे हमारे पास आए, चाहे वो किसी और भी सेवा प्रदाता के पास, एनजीओ के पास जाए, वो एक एप्लीकेशन लिखती है और उसमें अपने साथ हिंसा हुए चीजों का जिक्र करती है। उसके पास या तो उसको मारा पीटा गया होगा, या तो उसको मेंटली टॉर्चर किया गया होगा, या तो उसको आर्थिक, तो ऐसा नहीं है। आप जब बात करते हैं पीड़ित से तो आपको चीजें समझ में आती हैं, और उसके लिए जब हम केस करवाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट भी करता है प्रक्रिया भी। तो अब इसको हम ये कहते कि महिला को एकदम सिपाही रिकॉर्ड ला के घरेलू हिंसा कराना है तो ऐसा नहीं होता है। महिला का कहना ही काफी है कि उसके साथ हिंसा हुई है, शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा। अगर हिंसा तो हिंसा ना, मैं मेंटली भी टॉर्चर हो रही हूँ, अगर मुझे अंदर से, अब मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि अगर वो हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है जिससे हमको पीड़ा हो रही है, जिससे हमको तकलीफ हो रही है, तो वो हिंसा ही है। और हिंसा के लिए कोई अलग से कानून, अगर घरेलू हिंसा है तो इसके लिए एक ही प्रावधान है जिसके तहत आप जाके इसके लिए केस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मारपीट हो तभी हम माने वो हिंसा है। देखिए, हमारे पास पहुंचने के तीन रास्ते हैं, तीन क्या, इसको हम चार भी बोल सकते हैं। पहले तो एक 181 हेल्पलाइन नंबर है, तो जो है सेंट्रलाइज नंबर है जो पूरे यूपी में काम करता है, और अगर 181 ना मिले तो 112 जो कि 181 से इंटीग्रेटेड हो चुका है, हम 112 भी मिला सकते हैं, 181 भी मिला सकते हैं। घरेलू हिंसा, इवन किसी भी प्रकार की हिंसा, महिलाओं से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से रिलेटेड अगर कोई शिकायत दर्ज करानी है, कोई बात बतानी है, तो 181 या 112 डायल कर सकते हैं। 1090 भी महिला हिंसा के लिए काम करती है, लेकिन इसका मूल रूप से जो साइबर क्राइम से रिलेटेड है, जैसे ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं वैसे ही वो अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी मामला है तो वहाँ पे 1090 काम करती है। लेकिन मैं अगर लोकलाइज लोगों से अगर अपील करूँ, अगर मैं उनको कुछ सुझाव देना चाहूँ, तो वो प्लीज 181 या 112 डायल करें, जिससे उनको पूरी तरह से मदद मिल सके।
1: पूजा जी ने हमें काफी कुछ जानकारियां दी जो कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में एक मजबूत कड़ी साबित हो सकती है। आशा है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आप सबको विस्तृत जानकारी मिल गई होगी और आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे और आप भी कहेंगे हिंसा को नो।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहाँ से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120406025 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूँ। बस सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जान है, सारी मुश्किलें आसान है। इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुट जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारामारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें। यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे जानते हैं? पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर। कैसे? शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की। नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की। जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है। कैसे जानते हैं? शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8 एफएम महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधु, और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
2: नमस्कार, आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: विश्व में भारत को परंपराओं और संस्कृतियों का देश कहा जाता है और दुनिया में अगर कभी भी महिलाओं को पूजने की, सम्मान देने की संस्कृति है तो उनमें सबसे पहला नाम भारत का आता है, क्योंकि हमारे देश की सभ्यता में, यहाँ की संस्कृति में महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है। परंतु फिर भी अपने देश में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। प्रत्येक दिन हजारों लाखों की तादाद में महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। कभी शारीरिक हिंसा, कभी मानसिक हिंसा, कभी यौन हिंसा और भी बहुत से प्रकार की हिंसाओं का सामना आए दिन महिलाओं को करना पड़ता है। हिंसा को नो की हमारी अगली कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार के बारे में। एक महिला के क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या कानूनी अधिकार उसे प्राप्त हैं विधि के द्वारा, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिलाओं के कानून के विशेषज्ञ एडवोकेट राकेश पांडे जी। इनसे इस विषय पर चर्चा करेंगी सहयोगी आरजे सोनिक। तो चलिए सुनते हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार पर ये खास चर्चा।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनी और महिलाओं के कानूनी अधिकार पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विधि विशेषज्ञ एडवोकेट राकेश पांडे जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो महिलाओं के कानूनी अधिकार होते हैं वो क्या क्या कानूनी अधिकार मिले हुए हैं सरकार की तरफ से महिलाओं को?
5: महिलाओं को जहाँ तक अधिकार की बात है, महिलाओं को की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक घरेलू हिंसा का व्यवस्था दी गई है सरकार की तरफ से। ये हमारा कानून जो है 2005 में बना, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को सुरक्षित करने के लिए। दूसरा चीज ये है कि महिलाओं को ये भी

0: अधिकार दिया गया है कि वह अगर परिवार की शादीशुदा महिला है और परिवार के बीच में वो प्रताड़ित हो रही है तो आईपीसी के तहत भी उसको व्यवस्था दी गई है कि वो 498 का मुकदमा प्रताड़ित करने वाले के विरुद्ध दाखिल कर सकती है। प्लस अगर वह उसका जो स्त्री धन है उसको मिला हुआ है, अगर उसको भी अगर उसके परिवार के लोग उसको हड़पते हैं तो उसके अंदर 406 के तहत वो चाहेगी तो वह दायर आईपीसी के तहत कर सकती है। तीसरा चीज, मान लीजिए कि कोई महिला शादीशुदा है और वह उसका पति जो है उसको भरण पोषण की व्यवस्था नहीं कर रहा है तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत वह अपने मेंटेनेंस के लिए दावा पारिवारिक न्यायालय में दाखिल कर सकती है और वहां से उसे रिलीफ मिलेगी। अगर उसके बच्चे हैं तो उनको भी सरकार कानून के तहत व्यवस्था की है कि उसको भी मेंटेनेंस दिया जाए और वो पाते हैं।
1: सर, आजकल घरेलू हिंसा जो है वो काफी बढ़ती जा रही है, तो घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या कुछ कानूनी अधिकार है महिलाओं के पास?
0: भाई, घरेलू हिंसा की जहाँ तक बात आप कहिएगा तो घरेलू हिंसा के अंतर्गत बहुत इसका विस्तृत रूप लिया गया है और इसके अंतर्गत मान लीजिए कि किसी महिला को अगर घर में वो है, अपने परिवार के बीच में है और उसको अगर उस घर से निकाल दिया जाता है और उसको खाने पीने की दिक्कत होती है, कोई भी समस्या उसे अगर होती है तो उसके लिए जो है 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दाखिल होता है और उसमें न्यायालय जो है उसके भरण पोषण के साथ साथ उसको आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराती है और अगर उसका कंप्लायंस नहीं होता है तो उसके आगे जो है 31 के तहत कंप्लेंट फाइल होती है और कोर्ट नॉन कन्विजिबल ऑफेंस मानते हुए उनको तलब करती है और तलब करके उनको दंडित करती है और जो कोर्ट का आदेश रहता है उसका कंप्लायंस कराती है। और मान लीजिए उसको अगर आदेश हुआ है कि उसको घर में रहने के लिए उसका जो जहाँ पे लड़की विदा होकर के जाकर के जिस कमरे में रहती है ये माना जाता है वह उसका अपना घर है, तो उस घर में रहने के लिए जो है वह अधिकार उसका हमेशा सुरक्षित रहता है कि मतलब कि कानून के दृष्टिकोण से 12 घरेलू हिंसा के तहत वह जाएगी अपने ससुराल में, उसी कमरे में उसको दिया जाएगा खाने पीने रहने की व्यवस्था, मेडिकल तक की भी सुविधा मुहैया कराने की भी व्यवस्था 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं।
2: हिंसा को नोके हमारे आज के विषय महिलाओं के कानूनी अधिकार पर हमारी ये चर्चा आगे भी जारी रहने वाली है, पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद आते हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पेश है हिंसा के खिलाफ ये प्यारा सा गीत।

0: हिंसा को नोके हमारे इस कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। हमारा आज का विषय है महिलाओं के कानूनी अधिकार, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधि विशेषज्ञ एडवोकेट राकेश पांडे जी। तो चलिए सुनते हैं राकेश पांडे जी के साथ ये चर्चा।
1: सर, अभी आप बता रहे थे कि 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम पारित हुआ है।
2: जी,
1: तो ये 2005 डीवी एक्ट है क्या?
2: ये इसको एक्चुअली में है क्या, ये महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 ये एक्ट बना, और इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करके घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005-06 में इसका लागू कर दिया गया। और इसके अंतर्गत जो है कई चीजें हैं जो घरेलू हिंसा को परिभाषित करती है सेक्शन 3 में, और उनके अधिकारों का संरक्षण सेक्शन 12 से लेकर के आपका 29 तक व्यवस्था दी गई है कि कब उनका किसके समय कौन कौन धाराओं में वो बात दायर करेंगी, उनका कंप्लायंस कब होगा और उनको अपील कहाँ होगी, ये सब चीजें इन सेक्शन में डिफाइंड की गई हैं।
1: सर, अगर कोई महिला अपने पति से तलाक लेती है तो उस वक्त उस महिला के पास क्या कुछ अधिकार रहते हैं? वो अपने पति से संपत्ति या फिर क्या कुछ ले सकती है और कैसे?
2: अब रही बात, जैसे कि डाइवोर्स के कई तरीके हैं। एक तो म्यूचुअल कंसर्ट से 13B के अंतर्गत डाइवोर्स लोग लेते हैं कि हमारे पति और पत्नी के बीच में अगर सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहे हैं तो एक पुस्त भरण पोषण लेकर के दोनों 13B का वाद दाखिल करके और एक दूसरे से अलग होने का निर्णय लेते हैं। अगर पति डाइवोर्स फाइल करता है क्रूएल्टी के आधार पे पत्नी के विरुद्ध, तो पत्नी का अधिकार वहाँ संरक्षित रहता है। अगर वहाँ पे वो अपने अधिकार के लिए, अपने भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए, उनके जीवन यापन के लिए जो भी चीजें हैं कोर्ट उसको दृष्टिगत रखते हुए एक आदेश पारित करती है और उसका कंप्लायंस आगे होता रहता है।
1: सर, अगर किसी शादीशुदा महिला को अगर प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए, तो उनके पास क्या कुछ अधिकार होते हैं?
2: हमारे पास IPC की धारा 498 एक सेक्शन है प्रताड़ना के लिए, प्रताड़ना 498। और जहाँ तक दहेज की बात आती है तो वो 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम अलग से एक्ट है जिसके अंदर 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसके तहत उसको वाद दाखिल होता है और FIR दर्ज होती है थाने पे, हो चाहे तो डायरेक्ट जाकर के 498 का नॉन कंजलेबल ऑफेंस के अंतर्गत माना जाता है 498-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो उसके तहत डायरेक्ट जाकर के थाने पे FIR करा सकती है और प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है और जेल भी भेज सकता है।
1: और सर, ये जो भी आप बोल रहे हैं कार्रवाई की जा सकती है, तो इस कार्रवाई के लिए महिला को क्या करना होगा, कैसे वो वहाँ तक आएगी?
2: महिलाओं के लिए, महिला चाहे तो सरकारी सुविधा के अनुसार 112 नंबर पे कॉल करके अपनी बातों को वो रिकॉर्ड करा करके और अपना प्रथम पत्र जाकर के नियरेस्ट थाने पे दे सकती है। महिला थाना बना हुआ है, महिला थाने पे जाकर के अपनी बातों को वो दर्ज करा सकती है, अपने प्रार्थना पत्र दे सकती है। शिकायत तो उसको स्वयं करनी पड़ेगी जो उसके साथ घटनाएं घट रही हैं, जो चीज उसके साथ दिक्कत आ रही है उसके लिए वो स्वयं जाकर के चाहे 112 नंबर पे या 1029 एक महिला हेल्पलाइन नंबर भी है 1029 पे भी वो कॉल कर सकती है और नियरेस्ट अपने पास के थाने पे जाकर के प्रार्थना पत्र दे सकती है।
1: थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए।
0: एडवोकेट राकेश पांडे जी ने हमें काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आशा है कि ये सारी जानकारियां आप सबको अच्छे से समझ आई होंगी और आप सब भी महिलाओं के लिए बने कानूनों को जान पाए होंगे, पहचान पाए होंगे, और आगे भी किसी भी महिलाओं के साथ कोई भी प्रकार की हिंसा हो तो वो अपने इन कानूनी अधिकारों के द्वारा उस हिंसा के खिलाफ खड़ी हो सकती है। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ मिलकर कहिए हिंसा को नो।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहाँ से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120406025 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूँ। बस सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपकी होस्ट खुशबू अख्तर। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज का दिन उस सफर की शुरुआत का दिन है जिसने करोड़ों भारतीयों को पहली बार एक दूसरे की आवाज से जोड़ा। 23 जुलाई, एक ऐसी तारीख जिसने ये साबित किया कि आवाज केवल सुनी नहीं जाती, वो इतिहास बन जाती है और उसे इतिहास में लिखा जाता है। आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, लेकिन आज हम सिर्फ इतिहास नहीं जानेंगे, आज हम ये भी समझेंगे कि रेडियो ने भारत को कैसे बदला, लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया। और आज जब दुनिया सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है, तब भी रेडियो की अहमियत क्यों बनी हुई है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास के बारे में। इंसान ने बोलना पहले सीखा या प्रसारण करना? इंसान हजारों वर्षों से बोलता आया है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब कोई आवाज सिर्फ उतनी दूर जाती थी जितना इंसान बोल सकता था। फिर आया रेडियो। पहली बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति की आवाज हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों तक एक ही समय में पहुंचने लगी। यही है प्रसारण की सबसे बड़ी क्रांति। भारत में रेडियो की शुरुआत 23 जुलाई 1927 में हुई। मुंबई में पहली बार नियमित रूप से रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। उस समय शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि आगे आने वाले वर्षों में यही माध्यम स्वतंत्र भारत की पहचान बन जाएगा। 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बना और 1957 में इसका नाम आकाशवाणी बदल दिया गया। आकाश से आने वाली वाणी, यह सिर्फ एक नाम नहीं था, भारत की सांस्कृतिक पहचान था। रेडियो ने भारत को क्या दिया, जरा सोच के देखिए। आज भारत आजाद नहीं हुआ होता, लोगों के पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, टेलीविजन भी हर जगह में नहीं था। ऐसे में अगर किसान को मौसम की जानकारी चाहिए, अगर किसी छात्र को शिक्षा चाहिए, अगर किसी परिवार को देश दुनिया की खबर जाननी है या क्रिकेट की लाइव अनाउंसमेंट सुननी है, तो सबसे भरोसेमंद साथी उस वक्त था रेडियो। रेडियो केवल एक समाचार नहीं था, वो देश को एक दूसरे के साथ जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण काम उस वक्त रेडियो ने किया था। इतिहास गवाह है, जब भी देश मुश्किल में पड़ा, रेडियो सबसे पहले लोगों तक पहुंचा। 1962, 1965, 1971, इन डेट्स को याद करिए। इन युद्ध के दौरान करोड़ों भारतीयों ने रेडियो के सामने बैठकर समाचार सुने। जब बाढ़ आई, भूकंप आए, तूफान आए, तो रेडियो ने लोगों को रास्ता दिखाया। इसीलिए दुनिया भर में आज भी रेडियो को सबसे भरोसेमंद आपदा संचार माध्यमों में गिना जाता है। लोकतंत्र और प्रसारण की अगर हम बात करें, तो लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, लोकतंत्र जानकारी से चलता है। अगर नागरिक सही जानकारी से ही वंचित हो जाए, तो लोकतंत्र अपने आप में कमजोर हो जाता है। इसीलिए पत्रकारिता और प्रसारण लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण कड़ी है। एक अच्छा प्रसारक केवल यह नहीं बताता कि क्या हुआ, वो ये भी समझाता है कि उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। जब इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, तो फिर कम्युनिटी रेडियो की क्या जरूरत है? इसका जो जवाब है वो बेहद आसान है। राष्ट्रीय मीडिया पूरे देश की बात करता है, लेकिन कम्युनिटी रेडियो आपके गांव की बात करता है, आपके कॉलेज की बात करता है, आपकी भाषा में बात करता है, आपकी समस्याओं को उठाता है। और सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो आपकी बात करता है। सोशल मीडिया बनाम प्रसारण की अगर हम बात करें, तो आज हर व्यक्ति मोबाइल लेकर खुद को एक ब्रॉडकास्टर मानकर आगे बढ़ रहा है। फिर एक वीडियो हो, ट्वीट हो, पोस्ट हो, कुछ मिनटों में लाखों लोगों तक वो पहुंच जाता है। लेकिन हर वायरल चीज क्या सच होती है? यहीं पर असली प्रसारण की जिम्मेदारी भी शुरू होती है। एक जिम्मेदार प्रसारक सबसे पहले सत्य की पुष्टि करता है, फिर उसे समाज तक पहुंचाता है।
रफ्तार जरूरी है लेकिन विश्वसनीयता भी उससे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं आज के दौर की, यानी एआई के दौर में रेडियो। आज एआई समाचार लिख सकता है, आवाज बना सकता है, वीडियो भी तैयार कर रहा है, लेकिन विश्वास, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता आज भी इंसान ही देता है। एआई एक उपकरण हो सकता है लेकिन पत्रकारिता की आत्मा नहीं। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमें ये याद दिलाता है कि आवाज में ताकत होती है, एक आवाज उम्मीद बन सकती है, एक आवाज बदलाव ला सकती है और एक आवाज समाज को जोड़ सकती है। यही है प्रसारण का सबसे जरूरी संदेश। आज जब हम नई तकनीकों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं तो आइए ये संकल्प लें कि हम सूचना केवल तेजी से नहीं बल्कि सत्य, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएंगे। मैं हूं खुशबू अख्तर, आप सुन रहे थे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम। सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM, जहां आवाज सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि समाज से संवाद भी करती है। शुक्रिया।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: विमलेश का नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है।
3: अजीत का भी नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है।
2: जी आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है
3: भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा और श्रीमती सरिता शर्मा जी ने। आपने लिखा है,
2: नेकियां करते रहिए क्योंकि ये हमारे जीवन की सुरक्षा निधि है।
3: क्या बात है, नेकियां करते रहिए क्योंकि ये हमारी जीवन की सुरक्षा निधि है।
2: हमारे जीवन में जब भी कभी तूफान आएगा तो ये नेकियां हमारे लिए कश्ती का काम करेंगी।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर लिखते हैं,
3: लुई पाश्चर पर आधारित कार्यक्रम बहुत अधिक पसंद आया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए।
2: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा, बसंती बाई और गणेश शिवदे।
3: डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये और साथ में तन्मय गजभिये।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
3: तो श्रोताओ अब सुनते हैं हमारी आपकी सबकी प्यारी लोकप्रिय श्रृंखला ये भी जानिए।
2: ये भी जानिए श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे महान अश्वेत नेता डॉक्टर नेल्सन मंडेला के जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में जो हमें अवश्य नई प्रेरणा देगी और जीवन के प्रति सोचने के हमारे दृष्टिकोण को जरूर प्रभावित करेगी।
3: श्रोताओ नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे।
2: जी
3: उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकेई नामक स्थान पर हुआ था। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार थी और अश्वेत नागरिकों से रंग या वर्ण के आधार पर भेदभाव किया जाता था।
2: रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और रोबेन द्वीप जेल भेज दिया गया था। जेल में कैदियों से कठोर परिश्रम कराया जाता था जिसका मकसद था संकल्प शक्ति को तोड़ना, लेकिन जेल का कठोर जीवन भी उनकी संकल्प शक्ति को तोड़ नहीं पाया।
3: श्रोताओं वे जेल में 27 वर्ष तक रहे। वे मजाक में कहते थे, मैं 27 वर्षों की लंबी छुट्टी पर गया था। जेल में बिताए गए वर्षों के दौरान नेल्सन मंडेला की प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई। उन्हें दक्षिण अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण अश्वेत नेता के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया।
2: 10 मई 1994 मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने। तो श्रोताओ ये तो था उनका छोटा सा परिचय। अब हम चर्चा करेंगे उस प्रेरक घटना की जिससे उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता की पहचान होती है।
3: श्रोताओ राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला एक बार अपने सहयोगी रिचर्ड के साथ विमान से यात्रा कर रहे थे।
2: जी
3: उन्हें अखबार पढ़ना बहुत पसंद था। विमान में मंडेला खिड़की के पास बैठे थे और उनके सहयोगी रिचर्ड उनके सामने बैठे हुए थे।
2: जी
3: राष्ट्रपति को खिड़की से बाहर कुछ दिखाई पड़ा तो उन्होंने अखबार हटाकर रिचर्ड को इशारा किया कि वो खिड़की से बाहर देखें। पता है श्रोताओ जब उनके सहयोगी रिचर्ड ने खिड़की से बाहर देखा तो क्या देखा?
2: उन्होंने जब खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि विमान के एक प्रोपेलर ने घूमना बंद कर दिया है। राष्ट्रपति मंडेला बड़ी शांति से बोले, रिचर्ड आप शायद पायलट को सूचित करना चाहेंगे कि प्रोपेलर काम नहीं कर रहा है।
3: रिचर्ड ने कहा, जी, और वे पायलट के पास भागे। श्रोताओ पायलट को इसके बारे में पहले से ही पता था और पायलट ने कहा, आप वापस जाएं और अपनी सीट पर बैठ जाएं, हम जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं।
2: रिचर्ड ने वापस सीट पर आकर मंडेला को सब कुछ बताया तो मंडेला ने पूरी गंभीरता से उनकी बात सुनी। जहाज में जितने लोग घबरा रहे थे उन सबको मंडेला जी ने शांत रहने को कहा। उसके बाद वह नीचे मुंह करके फिर से अखबार पढ़ने लगे।
3: श्रोताओ थोड़ी देर बाद विमान आराम से हवाई अड्डे पर उतर गया और कुछ भी अप्रिय नहीं घटा। तब जहाज में सबको एहसास हुआ जो घबरा रहे थे कि राष्ट्रपति मंडेला बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं और परेशानी में भी शांत रहना जानते हैं।
2: जी
3: जहाज जब उतरा तो सबकी आंखों में मंडेला जी के लिए प्रशंसा के भाव थे।
2: नेल्सन मंडेला के सुविचार हैं,
3: मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता।
2: वो कहते थे, मैं कभी असफल नहीं होता, मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ।
3: तो श्रोताओ इसे कहते हैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना और आपा नहीं खोना। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, डॉक्टर नेल्सन मंडेला को शुरुआती दिनों में किस जेल में रखा गया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: डॉक्टर नेल्सन मंडेला को शुरुआती दिनों में किस जेल में रखा गया था?
3: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है जिस पर आप अपना उत्तर हमें भेज सकते हैं
2: और हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इस पर भी आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
3: और आइए सुनते हैं अब आज के कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है न्यूटन की कहानी।
2: श्रोताओ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के नियमों को कौन नहीं जानता। वे एक महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। आइए सुनते हैं उनके जीवन पर आधारित कार्यक्रम न्यूटन की कहानी।
4: बहुत पुरानी बात है। इंग्लैंड के एक शहर में एक बालक रहता था। एक दिन उसकी बड़ी बहन ने उससे पूछा,
5: न्यूटन भैया, भैया,
6: हाँ, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो।
5: वो मैं खाना देकर जाती हूँ तो वो भी बड़े बड़े ठंडा हो जाता है। आखिर बात क्या है भैया?
6: कैथरीन, एक दिन मैं सेब के बाग में बैठा हुआ था, तभी एक सेब नीचे आ गिरा। मैं उसी सेब के बारे में सोचता रहता हूँ।
5: वाह भैया, ये भी भला कोई सोचने की बात है। सेब के बाग में सेब तो अक्सर ही नीचे गिरते रहते हैं। इसमें इतना सोचने की क्या बात है कि तुम खाना खाना भी भूल जाते हो।
7: कैथरीन, मेरी प्यारी बहना, क्या तुमने कभी सोचा है कि सेब या कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है?
5: ये तो हमेशा से ही होता आया है, भला इसमें नया क्या है?
7: सेब के नीचे गिरने में नया कुछ नहीं है, मगर प्रश्न तो नया है ना?
5: हाँ?
7: मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा।
6: सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा?
5: अरे अरे, अब क्या सोचने लगे भैया, पहले खाना खा लो।
7: कैथरीन, खाना रख दो, मैं खा लूंगा।
5: ये तो तुम रोज ही कहते हो, आज मैं यहीं सामने बैठकर तुम्हें खाना खिलाऊंगी, तभी जाऊंगी।
7: अच्छा बाबा, लाओ खा लेता हूँ।
5: ये हुई ना बात।
8: ये बालक कोई और नहीं बल्कि महान ब्रिटिश भौतिक शास्त्री तथा गणितज्ञ आइजक न्यूटन था। न्यूटन का जन्म 4 जनवरी सन 1643 को इंग्लैंड के लंकाशायर में वुल्सथोर्प नामक स्थान में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा एक मामूली स्थानीय पाठशाला में हुई। 12 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रंथम में ग्रामर स्कूल में विधिवत शिक्षा पाने के लिए भेजा गया। कुछ वर्ष बाद एक दिन न्यूटन की मां हन्ना उनके स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलने गईं।
9: सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
10: आइए आइए मिसेस हन्ना, आइए बैठिए।
9: जी
10: हाँ मिसेस हन्ना, कहिए।
9: सर, मेरा बेटा न्यूटन पढ़ाई में कैसा चल रहा है?
10: देखिए मिसेस हन्ना, न्यूटन एक बहुत ही शांत, सौम्य और चिंतनशील स्वभाव का बालक है।
9: हाँ सर, वो तो वो शुरू से ही है, किंतु वो कुछ पढ़ता लिखता भी है कि नहीं?
10: देखिए मिसेस हन्ना, न्यूटन को नई नई खोजें करने तथा मैकेनिकल काम करने में गजब की महारत हासिल है। एक बार उसने एक पवन चक्की बनाई। क्या आप जानती हैं मिसेस हन्ना कि वो कैसे चलती थी?
9: नहीं, आप बताइए।
10: न्यूटन ने चूहे की पूंछ में धागा बांध दिया और धागे का दूसरा सिरा पवन चक्की से बांध दिया।
9: अच्छा।
10: अब जब चूहा उछल कूद करता या दौड़ता तो पवन चक्की चलती। और इसी तरह मिसेस हन्ना, एक बार उसने अपने लिए 4 पहियों वाली एक गाड़ी बनाई जो डगमगाते हुए चलती थी। उसे वो अंदर बैठे बैठे ही मोड़ भी सकता था।
9: अच्छा। सर, घर में भी वो अपनी चचेरी बहन और अन्य लड़कियों की गुड़ियों के लिए मेज कुर्सी बनाया करता था। लेकिन सर, अब वो 17 साल का हो गया है और मैं चाहती हूँ कि वो कुछ काम करे ताकि घर का खर्च चल सके सर, और मैं उसे खेत के काम में या फिर भेड़ पालने के काम में लगाना चाहती हूँ। लेकिन वो न जाने क्या क्या अजीबोगरीब खिलौने बनाता रहता है या फिर उपकरण बनाता रहता है, मैं तो उससे तंग आ गई हूँ।
10: देखिए मिसेस हन्ना, जहाँ तक मैं न्यूटन को समझ पाया हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आपको उसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भेजना चाहिए।
9: सर, लेकिन मैं उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती।
10: इसकी चिंता आप ना करें, वो एक होनहार विद्यार्थी है।
9: जी।
10: उसके लिए मैं उसकी स्कूल की फीस माफ कर सकता हूँ।
9: शुक्रिया सर, फिर तो मैं उसे आगे पढ़ने के लिए जरूर भेजूंगी।
10: जरूर भेजिएगा मिसेस हन्ना
9: जी।
8: इस प्रकार आर्थिक अभावों से जूझते न्यूटन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। सन 1661 में वो ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिल हुआ। वहां वो अपना खर्च बाकी अमीर बच्चों के व्यक्तिगत कार्य करके निकालता था। कैम्ब्रिज में न्यूटन ने फ्रेंच दार्शनिक रेने डिस्कार्टे की पुस्तकों को पढ़ा और तभी से उसने अपने आसपास के पर्यावरण, पदार्थों की प्रकृति, प्रकाश, रंग, ब्रह्मांड के नियम आदि पर प्रश्न करने शुरू कर दिए।
4: एक दिन न्यूटन सूर्य की ओर एक टक देख रहा था, तभी उसका मित्र विलियम वहां आया।
11: न्यूटन? अरे न्यूटन, तुम एक आंख बंद करके सूर्य की ओर यूं टकटकी लगाए कब से देख रहे हो और क्यों देख रहे हो?
12: विलियम, मैं रंगों से संबंधित एक प्रश्न की जांच कर रहा हूं, इसीलिए सूर्य की ओर एक टक देख रहा हूं।
11: लेकिन तुम कब तक ऐसे ही देखते रहोगे?
12: जब तक सभी रंग बदल नहीं जाते।
11: मगर इससे तो तुम्हारी आंख खराब हो सकती है।
12: हाँ, वो तो है, किंतु मेरे पास इस प्रश्न की जांच करने का कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। मुझे देखने दो।
11: क्या हुआ? क्या हुआ न्यूटन?
12: मुझे आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंख के आगे तारे झिलमिला रहे हैं।
11: मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम माने नहीं। चलो मैं तुम्हें सहारा देकर अंदर ले चलता हूँ।
12: लेकिन मेरे
11: चलो मेरे साथ तुम। अब तुम्हें कई दिन तक अंधेरे कमरे में ही रहना पड़ेगा, जब तक कि तुम्हारी आंख पूरी तरह ठीक ना हो जाए।
12: लेकिन विलियम, मैं अपने प्रश्न का उत्तर खोज कर ही रहूंगा।
11: खोज लेना उत्तर, लेकिन फिलहाल तो आराम करो।

0: सन 1665 में इंग्लैंड में प्लेग की महामारी फैली। और 10 अक्टूबर सन 1665 को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को भी बंद कर दिया गया। न्यूटन को अपने घर लौटना पड़ा। परंतु विश्वविद्यालय का बंद होना भी न्यूटन के लिए वरदान साबित हुआ।
1: अब न्यूटन पढ़ाई से छुट्टी पाकर पूरा समय अपने शोध कार्य पर लगा सकता था। सन 1666 न्यूटन के जीवन का अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध हुआ। इसी साल न्यूटन ने आधुनिक कैलकुलस पर 3 शोध पत्र प्रस्तुत किए।
2: न्यूटन,
3: अरे विलियम,
2: अरे न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे इन शोध पत्रों की पूरे यूरोप में धूम मची हुई है और 23 वर्ष की छोटी सी आयु में ही तुम यूरोप के प्रमुख गणितज्ञ बन गए हो। अच्छा न्यूटन, क्या तुमने कभी गैलीलियो और जॉन केपलर की इससे संबंधित पुस्तकें पढ़ी हैं?
3: हाँ विलियम, गैलीलियो ने अपनी पुस्तक में वस्तुओं के वापस धरती पर गिरने की बात कही है और जॉन केपलर के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या तुम जानते हो मित्र, एक बार बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था?
2: भला मैं कैसे जान सकता हूँ, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं। अच्छा बताओ क्या हुआ था।
3: मैं एक दिन बाग में सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और एक सेब मेरे सिर पर आ गिरा।
2: फिर
3: मैं कई दिन तक यही सोचता रहा कि ये सेब पेड़ से सीधा धरती की ओर ही क्यों गिरा, दाएं बाएं या ऊपर क्यों नहीं गया। तब से ये प्रश्न मुझे लगातार परेशान करता रहा। लेकिन विलियम, अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है।
2: क्या समझ में आ रहा है?
3: यही कि धरती के अपनी धुरी पर घूमने से जो बल पैदा होता है वो ऊपर से गिरने वाली किसी भी वस्तु को धरती की तरफ खींचता है। और उसे हवा में इधर उधर या ऊपर नहीं जाने देता।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: हाँ यही है इस प्रश्न का उत्तर।
0: इसी प्रकार चिंतन, मनन, अध्ययन तथा वैज्ञानिक प्रयोग करते करते न्यूटन ने गति के 3 नियम और उन पर आधारित गुरुत्वाकर्षण का नियम बना लिया। न्यूटन द्वारा बताए गए गति के 3 नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, कोई भी वस्तु जिस स्थिति में है उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं आता जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे।
1: दूसरा नियम है, जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसकी स्थिति या गति में परिवर्तन उस बल की मात्रा के अनुरूप होता है।
0: और तीसरा नियम है, कोई भी वस्तु अपने पर होने वाली क्रिया के विरुद्ध उतनी ही प्रतिक्रिया करती है।
1: गुरुत्वाकर्षण है क्या? गुरुत्वाकर्षण के लिए अंग्रेजी शब्द है ग्रेविटेशन, जो प्राचीन लैटिन शब्द ग्रेविटास से बना है। ग्रेविटास का अर्थ है भारीपन। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को खींचता है और जिस बल से खींचता है वो उनके आकार तथा केंद्रों के बीच की दूरी के अनुपात में होता है।
0: न्यूटन ने सन 1668 में एक नए प्रकार की दूरबीन बनाई। इस दूरबीन की प्रसिद्धि तथा उपयोगिता ने न्यूटन का नाम पूरी वैज्ञानिक बिरादरी में चमका दिया। इस खोज के बाद दूरबीन का आकार घटकर केवल 6 इंच लंबा तथा 1 इंच व्यास का रह गया। इतना ही नहीं, ये छोटी दूरबीन पिछली दूरबीन की तुलना में 30 गुना बेहतर थी। बृहस्पति, शनि आदि दूर स्थित ग्रहों को देखने में ये दूरबीन विशेष रूप से सहायक थी।
1: अक्टूबर सन 1669 में न्यूटन को गणित का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया। सन 1696 में वे लंदन मिंट के वार्डन तथा सन 1699 में वहां के मास्टर बन गए। सन 1703 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष पद प्राप्त हुआ, जिस पर वे मृत्यु पर्यंत रहे। सन 1705 में क्वीन एनी ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। इस उपाधि से सम्मानित होने वाले न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे। इकतीस मार्च सन 1727 को ये महान वैज्ञानिक इस संसार से विदा हो गया।
0: न्यूटन ने कई पुस्तकें लिखी। अपनी पहली पुस्तक कुछ दार्शनिक प्रश्न के आरंभ में वे कहते हैं,
3: प्लेटो मेरा मित्र है, अरस्तु मेरा मित्र है, लेकिन मेरा सबसे प्यारा मित्र है सत्य।
1: न्यूटन की प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है सन 1687 में प्रकाशित उनकी अद्भुत पुस्तक मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। इसे संक्षेप में प्रिंसिपिया भी कहते हैं। आधुनिक विज्ञान के इतिहास में यह पुस्तक मील का पत्थर मानी जाती है।
0: सन 1704 में न्यूटन की एक और महत्वपूर्ण पुस्तक ऑप्टिक्स प्रकाशित हुई। ऑप्टिक्स में न्यूटन ने प्रकाश का सिद्धांत प्रस्तुत किया।
1: न्यूटन के समय तक रंगों के बारे में अजीबोगरीब तथा अलग अलग धारणाएं थीं, जैसे कि प्रिज्म किसी भी प्रकाश को रंगीन बना देता है, परंतु न्यूटन ने सिद्ध किया कि सफेद रोशनी अलग अलग रंगों से बनी होती है और प्रिज्म उन रंगों को केवल छितरा भर देता है, यानी अलग अलग रंगों को दिखा देता है।
0: विज्ञान के क्षेत्र में सर्वदा चमकने वाले इस सितारे के योगदान को ये संसार कभी नहीं भुला सकता। उनके महान योगदान के लिए हम सब उनके सदा कृतज्ञ रहेंगे।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यूटन की कहानी। श्रोताओं, आज हमारे पास समाचार भेजने के तेज से तेज साधन हैं।
5: बस पलक झपकते ही सूचनाएं और समाचार दुनिया के किसी भी कोने पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक समय था जब एक आवाज हमें बहुत प्यारी लगती थी, डाकिया आया डाकिया आया।
4: तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम देखो डाकिया आया।
6: एक दिन जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी, तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रिन ट्रिन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। वाह, कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा, देखा डाकी आया। चंचल सोचने लगी, हाँ डाकिया, ये कौन? बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
7: डाकिया अंकल,
8: आओ बेटा।
7: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
8: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
7: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
8: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
7: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
8: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
7: नेटवर्क क्या होता है अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
8: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव गांव शहर शहर सब जगह।

0: बेटे आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे। आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम, पिन कोड वगैरह, अगर आप सही लिखते हैं, साफ लिखते हैं, तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
1: ओ, आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
0: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो। आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली, उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है। चाहे धूप हो, बारिश हो, तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है। आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
1: डाकिया अंकल, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
0: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
1: हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद डाकिया अंकल।
0: धन्यवाद चंचल।
2: डाकिया अंकल से मिलने के बाद अब चंचल अपने घर में सबको कहने लगी, चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखा करो, ताकि डाकिया अंकल एक जगह से दूसरी जगह हमारी चिट्ठियाँ ले जाएं। और वो सोचने लगी, मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी ना, तो ऐसे ही सुंदर सुंदर अक्षर बनाकर सबको चिट्ठी लिखकर भेजा करूंगी और अपने मन की बात सबको बताऊंगी।
3: तो श्रोताओ, डाकिया आया और अब जाने वाला है। मेरा मतलब है अब हमारा समय यहीं समाप्त होता है। तो अगले सप्ताह तक के लिए
4: अजीत
3: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूँ कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जाँच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जाँच कराएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

सुनो शारदा 90.8 FM बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और इसी बीच हमारे से जुड़ी हुई है एक बहुत ही खास हस्ती, जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। परिचय कराने से पहले हम बता देते हैं कि उनको रेडियो की दुनिया का अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि कहीं ना जाएं, उन्हें सुने। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीतिका उनियाल जी, जो कि FM रेनबो पर बतौर रेडियो जॉकी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपको कैसा लग रहा है?
1: सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो शारदा 90.8 FM इसके माध्यम से आज मैं आप सभी के बीच सम्मिलित हूँ, यानी कि रेडियो की इस दुनिया से मेरा संबंध और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि आज के विशेष दिन पर आपने मुझे आमंत्रित किया और आज मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और बहुत ही सुहाना सफर रहा है अभी तक रेडियो की दुनिया में, और उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर भी हम कुछ नया देंगे। हमारा हमेशा प्रयास यही रहना चाहिए।
0: जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के बारे में, और रेडियो को जोड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसा कि हमारी थीम भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेडियो एम्पावरिंग वॉइस ऑफ कम्युनिटी। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या AI कम्युनिटी की आवाज को और सशक्त बना सकता है?
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी रेडियो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और आज के युग में जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हर जगह है, तो रेडियो की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहीं ना कहीं और सशक्त करेगा। सशक्त कहने का मतलब ये है कि हम और भी ज्यादा इम्पावर हो जाएंगे। जहां पहले हम स्ट्रगल किया करते थे कि हम उचित सामग्री इकट्ठा करें और फिर अपनी स्क्रिप्ट बनाए, स्क्रिप्ट बनाने के बाद फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग करें, फिर उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें या फिर लाइव जाकर अपने प्रोग्राम्स को दें, लेकिन अब चुटकियों में क्षण भर में प्रोग्रामिंग आसानी से की जा सकेगी, क्योंकि हमारे पास AI के उपकरण यानी कि टूल्स मौजूद होंगे, जिसकी मदद से हम कुछ ही समय के अंदर अपने काम को कर पाएंगे।
0: हाँ, तो मैम, हम मान सकते हैं कि AI समुदाय की आवाज को और सशक्त बनाएगा और समुदाय के बीच में जाकर और बेहतर प्रोग्रामिंग करेगा। ग्रामीण लोगों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बच्चों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, सब पर AI बेहतर कंटेंट के साथ प्रोग्राम बना रहा है और लोगों के बीच में जाकर एक लोकप्रिय भूमिका में स्थित भी है। तो मैम, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से रेडियो के कंटेंट प्रोडक्शन में सबसे बड़ा बदलाव हमें क्या देखने को मिलेगा?
1: देखिए, अगर कंटेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम अगर अतीत के पन्नों को झांक कर देखिए, तो हमेशा से ही हमने रेडियो के माध्यम से कंटेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। कंटेंट का अर्थ यहाँ पर है हमारी जो आम जनता है, जिनके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हीं की बात उन्हीं तक पहुंचानी है, जो मुद्दे हैं उन तक पहुंचाने हैं। तो प्रोग्राम के कंटेंट में इस तरह से फर्क पड़ेगा कि अब हम AI टूल्स के माध्यम से या AI के संपर्क में आने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में, यानी कि हमारे समुदाय के भी किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे जो उस परेशानी से ग्रसित हैं या जो चाहते हैं कि उनकी आवाज आम आवाज बन जाए और सब तक बात पहुंचे, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी।
0: जी गीतिका जी, आपने हमारे लिसनर्स को बहुत जरूरी और बहुत ही बेहतर जानकारी दी है। जैसा कि आप FM रेनबो पर इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं, समुदाय के लोगों से जुड़ रही हैं, अनेक कार्यक्रम बना रही हैं, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, देश विदेश से संबंधित कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, और आपकी आवाज एक सशक्त माध्यम है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम किसी भी रेडियो प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते समय मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, क्या AI भी जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो मानवीय संवेदनाओं को समझ पाता है?
1: जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, AI अगर हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं, तो AI हमें सशक्त सिर्फ डेटा देकर बनाएगा।
0: जी,
1: हमारी पूरी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि भावनात्मकता की अगर बात की जाए तो मनुष्य में है। जब मनुष्य की बात की जाए, तो मनुष्य ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल टूल्स बना रहा है जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ना कि उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कभी क्या किसी को सुना है कि उसने अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया? ऐसा कभी होता नहीं है और कभी होगा भी नहीं। तो AI सिर्फ मदद करने वाला एक ऐसा टूल है जो हमारे समय को कम करेगा, यानी कि जितना समय हम पहले से लगाते आ रहे हैं किसी काम को करने में, उसे कम कर देगा। लेकिन जब भावनाओं की बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, तो मनुष्य कि आगे कोई और नहीं, मनुष्य अपने आप में एक ही है और एक ही रहेगा, और उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वही रहेंगी जो मनुष्य के पास है। मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य एक समय पर एक काम कर पाता है, चीजों का आकलन कर पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है, रो पाता है, हंस पाता है। आपने अगर अपने बच्चे के लिए घर पर किसी रोबोट को खरीदा है जो सिर्फ चलता है, नाचता है, गाता है, क्या कभी आपने उसको रोते हुए सुना है? कभी क्या आपने उसको हंसते हुए सुना है? वो तो आप ही के द्वारा चाबी घुमाने पर आपकी भाषा बोलता है,
0: लेकिन
1: आप नहीं बनता।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसा कि AI इन दिनों कंटेंट फॉर्मेशन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सामुदायिक रेडियो हैं, सुनो शारदा 90.8 FM, हम काम ही समुदाय के लिए करते हैं, लोकल वॉइस को आगे लेकर जाना। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से बात करना चाहती है। हम समुदाय की आवाज बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि AI जहां हर तरीके के कंटेंट का निर्माण कर रहा है, क्या लोकल भाषाओं में भी AI अपना कमांड कर पाएगा? कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं ब्रजभाषी बोली जाती है। अगर हमें अपने समुदाय से जुड़ना है तो हम लोकल लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या AI लोकल लैंग्वेज पर कमांड कर पाएगा या कर पा रहा है, और वो कितना समुदाय तक पहुंच पा रहा है, ये आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
1: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब यहाँ पर बात क्षेत्रीय भाषाओं की हो रही है, जैसा कि आपने स्वयं से प्रश्न किया है इस बात में कि हम कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, और कम्युनिटी यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों के समुदाय, अलग अलग गांवों के समुदाय स्टेशन हो गए, तो वहां पर क्षेत्रीयता बदलेगी, क्षेत्रीयता बदलेगी तो भाषा बदलेगी, भाषा बदलेगी तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जब हम अपने जो हमारा प्रदेश है, जो हमारी कम्युनिटी है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे ना तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्शन के लिए जरूरी है उस भाषा का इस्तेमाल करना अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कंटेंट में, जिससे कि समुदाय है वो हमसे जुड़े। अगर मैं किसी समुदाय को संबोधित कर रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो शायद मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगी। AI निश्चित रूप से यहाँ मददगार होगा। AI टूल्स का इस्तेमाल कर हम किसी और भाषा में, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है जो किसी और भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये मेरे समुदाय के लोगों के बड़ा काम आने वाला है, तो AI टूल्स को यूज कर उसका इस्तेमाल कर मैं उस भाषा का अनुवाद करवा सकती हूँ। क्षण भर में मेरे पास अनुवाद आ जाएगा, और क्योंकि मैं जानकार हूँ, मैं समुदाय से अपना संबंध रखती हूँ और समुदाय के लोगों को जानती हूँ, उनकी भाषा को जानती हूँ, और मैं फिर उसको अनुवादित कर अपनी भाषा में उन तक पहुँचा सकती हूँ।
0: हाँ, तो हम मान सकते हैं कि लोकल भाषाओं में AI अच्छा कंटेंट बना सकता है।
1: जी
0: मैम, आप हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारे समुदाय के लोग जमीनी स्तर पर आपसे जुड़ें। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कम्युनिटी रेडियो के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधनों में कम्युनिटी रेडियो को रन करना होता है। हम टीम मेंबर्स समुदाय के बीच में जाकर समुदाय की आवाज बनना चाहते हैं, ऐसे में AI की तकनीक को हम किस तरीके से अपना सकते हैं? क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग का जरूरत है, या हम समुदाय के लोगों के बीच में जाकर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट AI की से बनाकर जो कि लोकल डायलेक्ट में हो उनके बीच पहुंचा सकते हैं? इस बारे में आप मुझे थोड़ा
1: देखिए, जब आपने कहा बताया आपको अपने समुदाय से जुड़ना है
0: जी,
1: तो मुझे लगता है कि आधी आत्मीयता तो आपने वहीं पूरी कर ली। जब समुदाय में यानी कि समुदाय में रहने वाले लोगों से आप जाकर मिले, आपने उनसे वन टू वन टॉक करी, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे आत्मीयता वहीं स्थापित कर ली। AI उनकी मनोस्थिति नहीं जानता है, AI आपको मदद करेगा, टूल्स मदद करेंगे कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में क्या क्या परेशानियां हैं। आपके पास हो सकता है सवालों की एक फेहरिस्त जरूर बन जाए, लेकिन सच में वो सवाल या वो मुद्दे उस समुदाय में हैं भी, या उस समुदाय को संबोधित करने वाले हैं भी या नहीं है, वो आप समुदाय से बात करके पता करेंगे। तो जो भी आप AI की मदद से सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं उसका क्रॉस चेक जरूर कीजिए। पूरी तरह से किसी भी उपकरण पर अपने आप को निर्भर कर देना ये गलत होगा। आज के युग में जब व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, तो आप किसी उपकरण पर विश्वास कर फिर से ऐसे कैसे एक रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं जो सीधा जुड़ा हुआ है आम जनमानस से।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसा कि हम कोई भी रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं समुदाय के लिए, तो हम काफी रिसर्च करते हैं, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, समुदाय के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि लोगों की असल मुद्दे क्या है जो रेडियो के माध्यम से जाने चाहिए। लेकिन आजकल बहुत तेजी के साथ स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है, क्या हमारे प्रोग्रामों की जो क्रिएटिविटी है उस पर AI का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया है या आने वाले समय में AI ही स्क्रिप्ट लिखेगा, तो फिर रिसर्च करके प्रोग्राम कैसे बनेंगे? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: ये प्रश्न भी आपका बहुत बहुत अच्छा है। AI स्क्रिप्ट, मैंने फिर कहा कि AI अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा जो एकदम आर्टिफिशियल है, वो उतनी ही सामग्री आपको देगा जितना उसके परिप्रेक्ष्य में आती है। मैं ये कहती हूँ कि जो दिमाग ईश्वर ने इंसान को दिया है वो शायद इंसान भी मशीन को नहीं दे सकता।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना। तो जब हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हम उसके कहते हैं ना कि हम किसी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों को लेकर आप जब स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको लगता है ये प्रश्न यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। सिर्फ ये मानव जाति के पास ही इस तरीके के गुण मौजूद है कि उसके पास ये शक्ति है कि वो अच्छे और बुरे में से अच्छे को अपने पास रखता है और बुरे को निकाल देता है। AI आपकी मदद कर सकता है, आपको स्क्रिप्ट दे सकता है, लेकिन फिर आपको पुनः निर्माण अपनी स्क्रिप्ट का, अपने प्रोग्राम का खुद करना होगा। ये मान लीजिए कि आपने अपने किसी साथी से हेल्प मांगी कि मेरी मदद कर दो क्या।
0: बिल्कुल,
1: उसने मदद की, पर आपको पूर्ण रूप से भी अपने साथी पर निर्भर नहीं होना है। उसने सिर्फ मदद की है
0: जी,
1: वो आप नहीं है। जिस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में एक है, आप मुझ जैसी नहीं और मैं आप जैसी नहीं, तो भला फिर मुझ जैसा AI कैसे हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कहते हैं ना कि मेरा क्लोन कोई भी नहीं अगर सही मायने में देखा जाए।
0: हाँ, सब अपने आप में पूर्ण है,
1: यूनिक है। तो क्योंकि मुझ जैसा कोई नहीं तो मशीन मेरे जैसी कैसे हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मशीन मेरे जैसी नहीं हो सकती, इसलिए उस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते।
0: जी मैम, आपने बेहद अच्छी बात कही कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है और कोई किसी का क्लोन नहीं बन सकता है। मैम, हम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम समुदाय की बात करते हैं। ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो सरकार तक जानी चाहिए, तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या AI की मदद से हम ग्रामीण स्तर की कहानियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा सकते हैं?
1: देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए आपको अब, जैसा कि आज मैं सिर्फ AI नहीं कहूंगी यहाँ पर, आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लगता है कि शायद आज सोशल मीडिया ही काफी है।
0: बिल्कुल,
1: कि आपने आज किसी मुद्दे पर बात करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके बाद जिस तरह से वो वायरल होता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो देश का मुद्दा बन जाता है। और यही कारण है कि शायद मन की बात जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हुए हैं कि जो देश के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचे, और जब वो मुद्दे उन तक पहुंचते हैं पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, तो वो खुद उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं बाकायदा रेडियो पर। तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें आत्मिक बने रहना है, एक दूसरे से बात करते रहना है, और निश्चित रूप से हमारी बात पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
0: जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं बेहद जरूरी हैं, जो AI उस तरीके से नहीं रख सकता जिस तरीके से हम रखते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी विषय पर है, क्या AI के कारण रेडियो में मानवीय संवेदनाएं और भावनाओं की कमी देखने को मिलेगी? क्या इस वजह से श्रोताओं का जुड़ाव हमसे कम होगा? अगर हम AI यूज करें तो हम किस हद तक यूज करें कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहें?
1: जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इस पर यही कहूंगी कि AI यूज कौन कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ट्रांसमिशन की, पैकेजिंग की, तब मैं कहती हूँ कि हम AI का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं AI हमारा काम थोड़ा कम कर देगा कि हमें प्रोग्राम को पैकेज करना है। आप और मैं ये साक्षात्कार कर रहे हैं, AI की मदद से आने वाले समय में आपने जो बात की और आपने बीच में मान लीजिए कोई गाना लगाना है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं कौन सा गाना लगाऊं। AI टूल का इस्तेमाल कर तुरंत आपके लिए एक गाने को सर्च कर लिया जाएगा, और देखिए जो समय आप आधा घंटा लगाते उस गाने को ढूंढने में, AI टूल की मदद से आपने उस गाने को ढूंढ कर
0: कुछ सेकंड्स में ढूंढ कर लगा दिया।
1: तो कहने का अर्थ ये कि आपकी प्रोग्रामिंग पैकेजिंग के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल बेहतरीन है। लेकिन फिर दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी बार बार कि जब मानवीय मुद्दों की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो दुनिया में हम जैसा कोई नहीं, यानी कि मनुष्य जैसा कोई नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि जो संचालन कर रहा है कार्यक्रम का वो कितना इन्फॉर्म्ड है, वो अपने कार्य के प्रति अपनी रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए कितना ज्यादा सजग है, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये चाहता है कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी कहूँ ना वो सब कुछ विश्वसनीय हो,
0: क्रेडिबिलिटी बहुत
1: जरूरी है। तो वो AI पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेगा, वो जो भी सामग्री तैयार कर रहा है, जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ AI की मदद से अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, वो किताबें ढूंढेगा, वो अखबार ढूंढेगा, वो रिसर्च पेपर्स देखेगा, उसके बाद ही संकलन करेगा, संग्रहण करेगा और अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेगा। हाँ, AI की मदद ले सकता है पर पूर्ण रूप से वो AI पर निर्भर नहीं करेगा। जो लोग AI पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रोग्रामिंग में, उनके कार्यक्रमों में आपको कहीं ना कहीं अलगाव महसूस होगा, आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये मेरी बात नहीं कही जा।
0: तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे श्रोता उतना नहीं जुड़ पाएंगे जितना कि उस प्रोग्राम से जुड़ पाते हैं जो हम खुद रिसर्च करके, मेहनत करके, समुदाय के बीच में जाकर उनकी संवेदनाओं को महसूस कर बनाते हैं।
1: अब देखिए, माना आप और मैं यहाँ पर एक साक्षात्कार कर रहे हैं और आपको मेरी जिंदगी की वो पहलू पता है जो शायद किसी को नहीं पता, तो बताइए कि आत्मीयता इस बात से ज्यादा होगी कि आपने उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर आपने AI के माध्यम से मेरे बारे में ढूंढ कर या उसके द्वारा एक स्क्रिप्ट बनाकर मुझसे सवाल
0: पूछ लिया। जो मुझे आपके बारे में जानकारी है, जो आत्मीय जानकारी है, उस पर अगर मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दूंगी तो मेरे श्रोता ज्यादा जुड़ेंगे आपसे।
1: जी जी, तो यही फर्क रहने वाला है कि जो लोग पूर्ण रूप से AI पर निर्भर रहेंगे वो कहीं ना कहीं उस मानवीय पहलू को भूल जाएंगे।
0: जी,
1: वो उसको उजागर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग जो काम करेंगे, जो करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्यादा जुड़ेंगे अपने लोगों तक।
0: अच्छा मैम, कहते हैं कि रेडियो दिल की आवाज़ है। रेडियो पर जब कोई गाना बजता है तो वो हमारे दिल तक पहुंचता है। क्या मशीन दिल की आवाज सुन सकती है? मशीन से मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है।
1: जी, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर ने ये दिल सिर्फ इंसान को दिया है, मशीन को नहीं, तो भला मशीन हमारे दिल की धड़कन कैसे सुन पाएगी? मैं फिर से कहूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बार बार बात हो रही है, ये मानव की ही खोज है। भगवान ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो इंसान ने मशीन को बनाया है। जिस तरह से ईश्वर सर्वोपरि है, उसी प्रकार मानव सर्वोपरि है मशीन के लिए। मशीन को भी ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन को भी चलाना पड़ेगा, मशीन को भी कमांड देना पड़ेगा, तो वो हम ही तो देंगे ना। तो जब हम ही देंगे तो हम क्यों सिर्फ मशीन लर्निंग पर, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से? मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर।
0: तो मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो करना है, लेकिन हमें पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं रहना। मैम, आजकल एक चीज बहुत सुनने में आ रही है, वॉइस क्लोनिंग। कई लोगों ने कहा भी कि हमारी वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये नैतिक रूप से सही है?
1: मैं कहूंगी कि नैतिक रूप से सही इसलिए नहीं है कि कल चलकर, माना कि रेडियो स्टेशंस के लिए अगर क्लोन बना दिए गए और इस्तेमाल भी कर लिए गए, आपने अपनी मैन पावर को कम कर लिया, आपके बहुत सारे मुद्दे सुलझ गए, जहां आप मान लीजिए कि अगर आप किसी रेडियो स्टेशन में 12 घंटे अपने देते हैं तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका क्लोन चल जाएगा, यानी कि क्लोनिंग वॉइस चल जाएगी। लेकिन ये मानिए कि ये जो दुनिया है ना, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर है, खासतौर पर अगर रेडियो की बात की जाए।
0: जी,
1: तो जो हमें यहां सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो कल चलकर लोग अपनाते हैं, और जब किसी चीज को अपनाया जाता है तो उसके सकारात्मक पहलू भी अपनाए जाते हैं और नकारात्मक भी। तो कहीं ना कहीं अगर वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल होने लगा तो कल चलकर बहुत ज्वलंत मुद्दे शुरू होने की आशंका है, क्योंकि कहते हैं कि संसाधन हमारे लिए, मनुष्य के लिए, पर मनुष्य पर निर्भर करता है कि उन संसाधनों को वो कैसे उपयोग में लेकर आएगा। इसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा तो हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, वो शायद कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। कोई भी मेरी आवाज का इस्तेमाल कर मैं बनकर कुछ भी गलत कर सकता है, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए
0: और इस पर हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। मैम, हम सामुदायिक रेडियो हैं, हम समुदाय के लिए ही काम करते हैं। तो आपने सुना होगा कि सोशल स्टोरी टेलिंग, मतलब समाज से जुड़े हुए मुद्दों की कहानियां जब बड़े मंच पर पहुंचती हैं तो वो लोगों पर काफी गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ में जब हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या AI टूल्स आने से सोशल स्टोरी टेलिंग ज्यादा बढ़े हैं, मतलब लोग सोशल स्टोरी टेलिंग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, या पहले की तुलना में कम हुए हैं?
1: देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि अगर खास तौर पर पत्रकारिता की बात की जाए ना, तो पूरी पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
0: जी,
1: पहले एक जमाना हुआ करता था जब व्यक्ति, जब पत्रकार सिर्फ पेंसिल से लिखा करता था। फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, डिजिटाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी, जो सशक्त पत्रकार हैं, सशक्त लोग हैं, जो आम जन की आवाज आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आज भी शब्दों की गरिमा को या ये कह लीजिए विषय की गरिमा को बनाए बैठे हैं। आपके कुछ शब्दों से विषय बदल सकता है, उसका मुद्दा बदल सकता है। आप कितने सजग हैं और आप कितने ज्यादा अपनी जो समुदाय है उसके प्रति आप संवेदनशील हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल कर या AI का इस्तेमाल कर आप अपनी जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या फेरबदल हो गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर संवेदनशीलता की बात आती है तो सर्वप्रथम अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल जो है ना वो सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन करता है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं।
0: जी,
1: तो पूर्ण रूप से संवेदनशील विषयों पर AI पर निर्भर रहना, तो मैं यही कहूंगी क्रॉस चेक।
0: बिल्कुल, क्रॉस चेक बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, बार बार यही कहूंगी, निर्भर नहीं होना है।
0: जी बिल्कुल सही कहा, हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, उन पर निर्भर नहीं होना। तो मैम अभी तक तो हम रेडियो कहते आए थे, लेकिन आजकल हम सुनते हैं स्मार्ट रेडियो। रेडियो अब स्मार्ट होता जा रहा है, रेडियो पहले से काफी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो रेडियो है उसके भविष्य को AI किस तरफ ले जा रहा है, ये ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा है या इनोवेशन की तरफ लेकर जा रहा है?
1: देखिए मैं ये कहूंगी कि सर्वप्रथम तो ऑटोमेशन।
0: जी,
1: सर्वप्रथम ऑटोमेशन इसलिए है कि एक कार्यक्रम को बनाने के लिए ना जाने कितने दिन लगते थे पहले।
0: बिल्कुल,
1: बहुत दिन लगते थे, रिसर्च की जाती थी, स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, फिर स्क्रिप्ट में भी किस तरह की स्क्रिप्ट है ये डिसाइड किया जाता था। अगर पैनलिस्ट हैं आपके कार्यक्रम में तो आपको पैनलिस्ट को बुलाना होता था, प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारे दिन लगा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब दुनिया भर में काम हो जाया करेंगे। इनोवेशन तो तब होगा जब हम एक नया फॉर्मेट लेकर आएंगे, कि रेडियो के माध्यम से हमने कहा कि हम टॉक शो कर रहे हैं, हम कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मेट लेकर आते हैं तो इनोवेशन होगा। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी सिर्फ ऑटोमेशन है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही जवाब दिया। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि AI सिर्फ एक सहायक टूल है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से निर्भर होना ठीक नहीं है। मैम मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से AI ने हमारे रेडियो के प्रोग्रामिंग को काफी आसान बनाया है, लेकिन श्रोताओं का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से बदलेगा? हम AI से कार्यक्रम तो बना लेंगे, प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन श्रोताओं का हमारे लिए इंटरेस्ट लगातार किस तरीके से बदलेगा, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: देखिए, श्रोताओं का इंटरेस्ट तभी बदलता है जब आप उनसे उनकी जैसी बात नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत आत्मिक हो रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ जो है ना स्माइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं,
0: जुड़ गए हम,
1: जुड़ गए। रेडियो के माध्यम से भले ही आप अपने श्रोता को नहीं देख सकते, श्रोता आपको नहीं देख सकते, लेकिन आपकी जो आवाज की जो गरिमा है, जिसका जादू है ना, सुनने वाले को अपने रेडियो सेट्स पर यही सुनाई देता है जैसे साक्षात वो व्यक्ति ना मेरे पास मेरे घर में बैठा हुआ है।
0: जी,
1: तो अगर हम AI पर बहुत ज्यादा निर्भर होंगे, देखिए AI की भाषा पर अभी भी हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते। आपने कई बार अगर जो लोग ChatGPT और इन सब का इस्तेमाल करते हैं, बड़े शौक से कहते हैं कि हमने ये स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आप उनकी स्क्रिप्ट और एक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को जब कंपेयर करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आत्मीयता किसमें ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगी और हर बार यही कहूंगी कि मानव मूल्यों का कोई तोड़ नहीं, और AI आपको सामग्री दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जैसे इमोशंस नहीं डेवलप कर सकता, आपके जैसे बात नहीं कर सकता।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे जैसे ना तो इमोशन डेवलप कर सकता है, ना श्रोताओं से इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है। मैम हम छोटे स्टेशन हैं, हम समुदाय से जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं उन्हें AI को किस तरीके से देखना चाहिए, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए या एक अवसर के रूप में देखना चाहिए?
1: जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी चाहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो, प्राइवेट FM स्टेशन हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं, हमारी आवाज किन के लिए है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए है जो हमें सुनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगियों में हमारी वजह से बदलाव आता है, जो बदलाव को महसूस करते हैं। अगर खास तौर पर कम्युनिटी रेडियोज की बात की जाए तो अगर आपको वो उपकरण दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को सशक्त कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि टूल्स का इस्तेमाल चाहे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हो या कोई भी एफएम स्टेशन क्यों ना हो, जरूर करें, क्योंकि अगर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है, जरूर करें। लेकिन हाँ, अगर हम संचालकों की बात करें जो आवाज की दुनिया के जादूगर हैं, उन्हें अपना जलवा आवाज का अपनी ही आवाज में यानी कि अपनी दिल की आवाज के जरिए ही करना है, ना कि AI की दिल की आवाज के जरिए।
0: हाँ, यानी अपनी आवाज का जलवा बरकरार रखना है। मैम, आपसे मेरा अब आखिरी सवाल है, और आपने हमें बड़ा कीमती समय दिया है अपना, लेकिन ये सवाल मेरे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है। हम सामुदायिक रेडियो हैं तो हम समुदाय की बात ही करेंगे, क्योंकि हमारा समुदाय ही हमारी ताकत है। मैम, समुदाय के बीच में जाकर एक बात मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि लोकल भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि समुदाय अपनी भाषाओं से बहुत तेजी से जुड़ता है। तो क्या AI लोकल भाषाओं में प्रोग्राम बनाकर कंटेंट को और जीवंत बना सकता है, और या उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है?
1: मैं तो यही कहूँगी, जब मेरी माँ बचपन से मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय भाषा में बात करती आई और मैंने उस भाषा में अपनी माँ को ढूंढ लिया, तो बताइए क्या AI मेरी माँ बन सकती है? उसी भाषा में क्या AI मुझसे बात कर सकती है जो मार फटकार प्यार दुलार मेरे परिवार से मुझे मिला मेरी भाषाओं या मेरी भाषा के माध्यम से, जिस भी क्षेत्र को मैं संबंध रखती हूँ जिस भी क्षेत्र से? तो जो चीज़ मुझे बिन मांगे मिल गई, वो मांग कर यानी कि AI के माध्यम से कैसे मिल सकती है? मेरा पूरा जीवन अपने क्षेत्रीय परिसर में गुजरा है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो मेरे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे दिया, जो भाषा मुझे प्राप्त हुई वहां से, AI जिसका जन्म अब हुआ, वो कैसे मुझे वो दे सकता है जो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ था ही नहीं? तो जो मेरे साथ बचपन से था ही नहीं, वो मुझे समझ ही नहीं सकता, जो मुझे समझ ही नहीं सकता, वो मुझे वो क्या कैसे दे सकता है जिस बात की मैं कल्पना कर रही हूँ? तो मैं यही कहूँगी कि क्षेत्रता की अगर आप बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से संबंध है, वही उन मूल्यों को आम जनमानस तक पहुंचा सकता है जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है। AI, फिर कहूंगी कि ये सहायता का उपकरण है।
0: बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच में एक सेतु का काम कर रहा है।
1: जी,
0: AI हमारी मदद कर रहा है सूचनाओं को देने में, हमें अपडेट करने में, हमारे टूल्स को आसान बनाने में, तकनीक को आसान बनाने में। फिर भी जो हमारी संवेदनाएं हैं, उस पर हमें उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से हम करते आए हैं। हमें समुदाय के बीच में जाना होगा, लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, और लोगों की हर बात को अपने स्तर से पहुंचाना होगा। हाँ, तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे मेरे साथ गीतिका उनियाल जी को, जो कि FM रेनबो पर बहुत फेमस प्रेजेंटेटर हैं। उनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है और लोग उनकी आवाज़ से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम और आप भी जुड़ गए। आज स्टूडियो में उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और हमसे AI तकनीक और सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर काफ़ी बातें शेयर करी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। मैम, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, एक और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं फिर कहना चाहूंगी कि AI हमारे टूल्स की जानकारी के लिए प्रोडक्शन में मदद करेगा, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की जगह, ओरिजिनलिटी की जगह, जिज्ञासा की जगह, समुदाय की आवाज की जगह AI नहीं ले पाएगा।
2: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई, अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: पाँच से नौ साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें

बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना, विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े, और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

सुनो शारदा 90.8 FM बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेने पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
3: नमस्ते आशा दीदी,
2: सब ठीक बा?
3: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी
3: हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम।
2: जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी ओके रा के तुरंत साफ करी,
3: जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे सब के साफ सफाई करी ले हम।
4: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ जा मच्छर बन पर भारी।
1: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ,
3: दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Bingo on Malaysia card, the end. दिमागी बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह।

0: मच्छरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है, ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। यह आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ।

सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा 90.8 FM बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: हाय, मैं अरुण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। आकाशवाणी अपने इस आदर्श वाक्य के साथ देश की जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस अर्थात नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जा रहा है, तो इस दिन की सभी सुनने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
1: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है.
0: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Music, Desi Trap, Singer, Lyricist, Composer, Simran Kaur Dudley, Title, Dilbar Jani. Let's listen to it only on Suno Sharda 90.8 FM.
5: Hard to say.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: का गोटे रंगा है लहरिया।
1: ओ दोनों को ही चाटो ने चाटो से मारा, इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा है, इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा।
2: अपने धंधे की फितरत समझिए, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: 10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निशुल्क उपलब्ध। एनीमिया फ्री इंडिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नाम तो सुना ही होगा।
2: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये आवाज आपने सुनी ही होगी। मेरा नाम है गगन। सुबह से लेकर शाम तक मैं रहता हूँ आपके साथ, लेकिन एक ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम अक्सर आपने सुना है, जिसकी आवाज से आपका दिन बन जाता है, या यूं कहें कि रातें बन जाती हैं। सो लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रही हैं आरजे सायमा, रेडियो मिर्ची की बड़ी फेमस आरजे, पुरानी जीन्स लेकर आती हैं और रेडियो शो में पुरानी हिंदी फिल्मों के गानों के साथ साथ दिलचस्प किस्से और शायरियां सुनाती हैं। जब इनसे मुलाकात हो तो मौके पर चौका मारना चाहिए, और ऐसे मौके पर चौका मारा हमारी सहयोगी खुशबू ने। उनसे बात की एआई के विषय में। आइए, क्या बात हुई, सुनते हैं आरजे सायमा को खुशबू के साथ।
3: आज हमारे साथ खूबसूरत आवाज के साथ साथ एक ओपिनियन रखने वाली आरजे मौजूद है, आरजे सायमा, जिन्हें किसी पहचान की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एआई के दौर में रेडियो किस तरह से बदल रहा है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बदल रहा है रेडियो एआई के बाद, कह रहे खत्म हो जाएगा, जॉब चली जाएगी, बहुत सारी सवाल हैं, आप इसे कैसे देखती हैं?
4: मैं इसे देखती हूँ कि रेडियो बदल रहा है, हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, हर मोमेंट बदलता है, तो रेडियो भी बदलेगा, और उसके बदलने में कोई बुराई नहीं है, हम बेहतरी की तरफ बढ़े। इसका जो एक प्रॉमिस है, उसका जो एक वादा है, वो उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें और उसमें हर वो नई चीज लाए जिससे जो सुनने वाला है वो मुतासर हो, वो उससे कनेक्ट करे। एआई एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे रेडियो एक्सपीरियंस को बेहतर कैसे करेगा, और मुझे यकीन है कि ये बेहतर करने के लिए ही आया है।
3: मैम, दौर बदला है, वक्त बदला है, हम बदलने के लिए और अडॉप्शन की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी आवाज को अगर कोई बदल कर कुछ और पेश कर दे तो ये कितना खौफनाक है, और इसे कैसे देखते हैं
4: आप? हाँ, ये बहुत खौफनाक है, और ये एआई का एक फ्लिप साइड है जहाँ पे हमें एथिकल लॉज की जरूरत है, हमें रेगुलेशन की जरूरत है, हमें बहुत सारे कानून की जरूरत है, ताकि इसी का दुरुपयोग ना किया जा सके। कोई भी टेक्नोलॉजी दोनों चीज लेकर आती है, वो आपके लिए फायदेमंद भी होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह भी बन सकती है। मेरी आवाज को इस्तेमाल करके कोई अगर नफरत की कोई बात कहे तो मुझे खुशी सिर्फ एक बात की होगी कि जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता है कि ऐसी बात मैं कभी कर नहीं सकती, और मैं यहाँ हूँ उस बात को झुटलाने के लिए। लेकिन ये कानून आना बहुत जरूरी है कि कोई भी मुझसे बिना पूछे मेरी आवाज नहीं बन सकता और नहीं इस्तेमाल कर सकता।
3: आज के दौर को आप उस आवाज में क्या कहना चाहेंगी जहां पर एक स्टूडेंट आपको सुनता है, आपको एज अ इंस्पिरेशन देखता है, और रेडियो को, क्योंकि डिजिटल दौर में रेडियो को इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी लाइन ब्लर हो रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप उन स्टूडेंट से कुछ कहें जिनसे वो ब्लर लाइन के बीच अच्छे से कनेक्ट कर सके।
4: एक इंसान को, यू नो, व्हाट डू वी लव, जिंदगी के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि अगले पल क्या होगा, एंड इससे हम इंटरेस्टेड रहते हैं, दिलचस्पी बनी रहती। जो रेडियो मीडियम है ना, वो हमें बहुत आजाद करता है, एक तो वो दुनिया बनाने में जो हम बनाना चाहते हैं, उस चीज को देखने में, और किस तरह से हमें देखना है, ये हमारे हमारे अंदर, ये हमारा राइट होता है। मैंने एक बात कही, अगर मैं सामने नहीं हूं तो आपने मेरे एक्सप्रेशंस तो नहीं देखे, लेकिन वो बात अब आप कैसे इमेजिन कर रहे हैं वो आपकी हो गई। तो रेडियो देने वाला मीडियम है, मैंने आपसे कोई बात अगर कही तो वो बात अब आपकी है, आप उसको कैसे सोचते हैं वो लिबर्टी आपके पास है, जो कि और मीडिया के पास नहीं है, वहां पे जो दिखता है वही है, आप बदल नहीं सकते।
3: बिल्कुल मैम, एक आखिरी सवाल आपसे है, एज अ रिसर्चर, कम्युनिटी रेडियो के अपने चैलेंजेस हैं, एज अ आरजे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि बड़े चेहरे, बड़े नाम, कहानियां बदल जाती है, लेकिन कम्युनिटी, छोटा सा प्रदेश, उसकी चुनौतियां और उसकी सस्टेनेबिलिटी बदल जाती है, तो क्या कहेंगे इस पे?
4: मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो रेडियो का असल फॉर्म नहीं, बिकॉज रेडियो इम्पैक्ट का मीडियम होना चाहिए और कम्युनिटी रेडियो के पास वो आजादी है कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। और आज के दौर में हमें छोटे छोटे हिस्सों में अपनी आवाज को एक बेहतर अंजाम के लिए इस्तेमाल करना है। सो कम्युनिटी रेडियो आज जितना रेलेवेंट और आज जितना जरूरी है उतना कभी भी नहीं था।
2: भाई बिल्कुल सही कहा आरजे साइमा ने कि जिस तरीके से सामुदायिक रेडियो स्टेशन आज रेलेवेंट है इतना पहले कभी नहीं था। सामुदायिक रेडियो स्टेशन आपकी आवाज है, जन जन की आवाज है और जन जन की आवाज को लाखों करोड़ों लोगों तक हम पहुंचा रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। इसीलिए कहूंगा कि सुरु शारदा 90.8 एफएम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और अगर आपको लगता है कि एक मुलाकात जरूरी है तो शारदा विश्वविद्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं इन्हीं नंबर पर कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। आरजे साइमा के साथ जुड़ी रही हमारी खुशबू। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरो शारदा 90.8 FM।
1: Hi everyone, this is Jania Doshi and you're listening to Suno Sharda 90.8 FM।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here।

0: हाय मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: शिशु के 6 महीने के होने के बाद
2: शिशु का शरीर मांगे उपयुक्त आहार।
1: खाने में 1 चम्मच घी या तेल है जरूरी,
2: जिससे आपके शिशु को मिलेगी ऊर्जा पूरी।
1: गाढ़ा मिलेगा भोजन,
2: तभी मिलेगा शिशु को संपूर्ण पोषण।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
4: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।